नमस्कार, FM बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ से ये आकाशवाणी जलंधर केंद्र का FM रेनबो चैनल है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1947 दे जेठ महीने की 22 तारीख है। तारीख तद अनुसार ईस्वी सन 2026 दे जून महीने की 12 तारीख है। इस वेले सवेरे 5:58 हो रहे हैं। साड़ी अज की सभा हुण शुरू हुंदी है। FM रेनबो अपने सारे स्रोतियों का निघा स्वागत करता है।

जी गल सीधे सीधे ही मनी जाएगी, सारिया नूं कठे नाल लेके ही चलेंगे, एक प्यारी जी मुस्कान दे नाल ते एक छोटी जी कोशिश दे नाल कि हमेशा हर सिचुएशन दे विच अपने आप नूं कंट्रोल करेंगे, गुस्से दे विच नहीं आवेंगे, हर किसी की मदद करने की कोशिश करेंगे ते अपने दिल नूं हमेशा हर किसी लिए साफ रखेंगे, मतलब कोई भी दिल दे विच गिले शिकवे आपां नहीं रखेंगे। जी गुड न्यूज़, जे आपां गल करिए ना छोटियां छोटियां गल्लां जे साडी जिंदगी दे विच हो भी जांदियां ते की कर लेना चाहिए, कभी भी गुस्सा आवे ना तुहानूं लगता है कहिंदे उल्टी गिनती शुरू कर देनी चाहिए है ना, 10, 9, 8, 7, 6, 5, जे उस तो भी गुस्सा ना कंट्रोल होवे ना फिर की काम करो, एक प्यारा जिहा गाना मतलब हाई बीट वाला चकवा जिहा सोंग ना तुसीं लगा के सुन लो, की हो सकता है कि तुहाडा जिहड़ा गुस्सा है ना वह शांत होने की कोशिश से जरूर पक्का होनी है। से जरा नुस्खा है, नुस्खा की कह रहे हैं आप, गल कह रहे हैं इनू अपना के जरूर वेखना, क्योंकि अजकल के टाइम के छोटिया छोटिया गल्लां ते बिल्कुल जिन्हां ते गुस्सा बन

0: सुनो, की तुसी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना बारे सुनिया है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इस नाल तोड़ा कर सूर्य कर बन जांदा है, यानी तोड़ा बिजली दा बिल जीरो। होर पैदा हुई कोई भी वादू बिजली ग्रिड नू बेच के पैसे भी कमा सकते हो। ता तुसी बैठे क्यों हो? हुने रजिस्टर करो pmsuryakar.gov.in ते।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

जी म्यूजिकल योर्स दिल तो दिल तक अफमान 102.7 मेगाहर्ट्ज़ से नाल 103.6 मेगाहर्ट्ज़ से तुसी प्रोग्राम इंजॉय कर रहे हो, यानी कि गुड मॉर्निंग जलंधर अपनी आरजे दोस्त राहिल दे नाल।

जी दोस्तों, तो सारे ने ट्यूनिंग किया है 102.7 एफएम रेनबो दे नाल नाल 103.6 मेगाहर्ट्ज़ वी दे प्रोग्राम चल रहा है। गुड मॉर्निंग जलंधर, 7:57 ते हो ही गए। चलो जी, एक छोटी जी रेसिपी बारे भी गल कर लेने की केड़ी रेसिपी चाहिए अज, क्योंकि सवेर के नाश्ते का ना हला गुला बहुत ज़्यादा रहिंदा है कि बनाया जाए, की बनाया जाए, योजा की होना चाहिए खाने दे विच कि जड़ा ईजीली बन भी जाए ब्रेकफास्ट के तौर पर, बंदा अपने बाकी सारे काम करने भी शुरू कर दे। की कहें हो, है ना? तो जे आप खासकर वेखिए ना, जे उपमे की गल करिए, उपमा जड़ा है ना भारत के दखनी हिस्से यानी कि कर्नाटक वाली साइड, तमिलनाडु वाली साइड, आंध्र प्रदेश वाली बहुत ज़्यादा मशहूर है। हल्का तो है ही है, डायजस्ट करने भी बहुत वधिया है, तो पौष्टिक तो बहुत ज़्यादा ही है। तो भारत के चाह के नाल भी बहुत ज़्यादा खाधा जाता है। हम जो उपमे की गल करिए, उपमे दे विच की जाता है? रवा। रवा यानी कि सूजी, जिहड़ी मोटी वाली हुंदी है ना, उस दी गल कर रही हैं। तो तुसीं लैणा की है? सूजी लैनी है, एक चम्मच तेल हो गया साडा, बहुत ज़्यादा ताम झाम नहीं जाता। तुसीं एक पैन लैना, उहदे विच बस हल्का जिहा तेल गर्म करना, उस दे विच अपने मसाले यानी कि जिहड़े अपने प्याज, हरी मिर्च, जिहड़ी सब्जियां पाना चाहुंदे, उहनां नूं हल्का हल्का सौते कर लो। राई दा तड़का मार सकदे, नाल कढ़ी पत्ता हो जाए तो बहुत ही वधिया। नाल ही फिर सूजी नूं भुनना शुरू कर दो, फिर एक हल्की हल्की जी अलग जी खुशबू जिहड़ी आनी शुरू हो जाती है। हाँ, हुण पता लग गया कि सूजी जिहड़ी है ना उह भुन चुकी है। बस फिर अगला काम की करना, तुसीं पानी पाना है, यानी कि जिनी क सूजी लेती, यानी कि सूजी एक कप है, तो उस तो डबल जड़ा ना तुसी हल्का पानी लेना है, मतलब डेढ़, पहले डेढ़ पा के देख लियो, फिर तुसी कहना ये तो कुछ होर ही बन गया। फिर राहिल ने इदा कहा सीगा सानू, हाँ हाँ वो वाला काम नहीं करना, ना ना स्वाद अनुसार नमक पाना है, कि जिन्होंने नमक लाइट पसंद है उस अकॉर्डिंग पा लैन, जिन्होंने नमक तेज़ हल्का जहा कई तेज़ खाना पसंद करते, मैं तो हूँ वेखे है, तो उस अकॉर्डिंग तुसी नमक पा सकते हो। तो बस चंगी तरह उसनू भुनना शुरू कर दो, जो बन जाए तो आप पता लग जाए। तो हल्का नाश्ता तो है ही है, तो ईजी है, ईजी रहो एक, यानी कि दो तीन मिनट तो मैं नहीं कहूँगी, देखो 6-7 मिनट लगते हैं इनू बनन दे विच। तो यह जड़ा है ना, इसके फायदे की है, हल्का है, आसानी नाल हजम हो जाता है, सवेर लई वधिया है, ऊर्जा भी सानू मिलती है स्रोत है, तो घट तेल वाला तो वधिया ना, घट तेल वाला खाना खाना चाहिए। सब्जियां मिला के एक पौष्टिक आहार साडा बन जाता है, पेट लंबे समय तक, मतलब लंबे समय तक भरिया रहा है, ठीक है कि नहीं? तो बाकी जड़ा दुध लाइफ के बहुत जरूरी है, जिन्ना क जरूरी फोन है ना, उन्ना क जरूरी लाइफ के दुध में भी कर लेना चाहिए सानू। की कहें फिर? सही कह रही है ना? डन डन डन डन, डन।

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चाहवान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।

हाँ जी, तुसी कह रही हो ऑल इज वेल कि नहीं, क्योंकि मैं ते अपने दिल ते हाथ रखिया होया, दिल अपने नु थामिया होया ते दिल नु यही कह रही है कि ऑल इज वेल। ते जदों आपां अपने आप नु कहंदे आ ना कि भई ऑल इज वेल, ते ऑल इज वेल हो जांदा है। ते जदों आपां अपने आप नु ऑल इज वेल नहीं कहंदे, फिर की हुंदा है? आओ अगले गाने च जांदे हां।

हाँ जी, सुन लिया। फिर जे तुसी अपने दिल ते हाथ रख के अपने आप नू ऑल इज वेल नहीं कहोगे तो फिर जिंदगी तुहाडा गोल माल ते बनाएगी बनाएगी। सो की करना है, टेंशन कोई नहीं लेनी है, रेडियो दी आवाज पूरी है चक देनी है ते डांस करना है। डांस क्यों करना है? क्योंकि जो अगला गाना है वो हैगा ही डांस पे चांस वाला है।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
4: ए, मेरा छोटा भरा है ना, बहुत शरारती है। कॉलेज विच मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा नु दिखाउंदा सी। कल मैं लाइट दे बिल ते जीरो अमाउंट वेखी। मैं सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किता होगा, नहीं तो जीरो बिजली बिल किवें पॉसिबल है। पूछया ते आखन लगा, वीर जी सब ऊपर वाले दी मेहर है, सोलर पैनल है ना। मैं क्या, ओहे ठीक है पुत्र।
5: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़न लई रजिस्टर करो PM सूर्य घर .gov.in।

मुफ्त कानूनी मदद टैली लॉ दी ऐप वेबसाइट www.tally-law.in या टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 प्राप्त की जा सकती है।

देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, एक गीत हैगा मूवी सिलसिला दा जो कि लिखी डायरेक्ट कीती ते प्रोडक्शन कीती सीगी यश चोपड़ा जी ने, ते इहदे विच जिहड़े हीरो सीगी ओह सीगे अमिताभ बच्चन ते उहनां दी नाल उहनां दे सीगे जया बच्चन ते रेखा जी। बहुत ही सोहनी मूवी सीगी ते अज वी लोकी इहनूं वेख के उन्ने ही एंटरटेन हुंदे ने जिन्ने उस समें ते हुंदे सीगे। अगला जिहड़ा गाना है ओह वी लता ते किशोर दी आवाज़ विच तुहाडे लई पेश कर रही हां, तेरे चेहरे से नज़र नहीं।

तेरे चेहरे से नज़र नहीं हटती, नज़ारे हम क्या देखें। ए गीत है गाय मूवी कभी खबीदा, जिदे लेखन किया सीगा पमेला चोपड़ा ने, डायरेक्शन ते प्रोडक्शन की यशराज चोपड़ा ने, एक्टर्स हैगे ने अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, ऋषि कपूर, राखी, वहीदा रहमान ते नीतू सिंह। अगला जिहड़ा तुसीं गाना सुन रहे हो वह हैगा है गाता रहे मेरा दिल।

0: केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने प्याज की खरीद की समीक्षा की यकीनी कीमत में सोध की थी। औरतों का आईसीसी 2020 क्रिकेट विश्व कप आज तो शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस गल ते जोर दिता है कि माली समावेश अते उद्यमशीलता तो लैके सिख्या सेहत संभाल सैनीटेशन रिहायश खेडां विज्ञान ते शासन तक औरतां वख-वख खेत्रां विच प्रमुख भूमिका निभा रहीयां ने। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टैक्नोलॉजी वर्गे उभर रहे खेत्रों में औरतों की बढ़ रही हिस्सेदारी मौकों के नवे राह खोल रही है ते देश भर में विकास बदल रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 12 साल में एनडीए सरकार ने औरतों की अगवाई वाले विकास को आगे बढ़ाने लिए काम किया है ते ये सारे खेत्रों में दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार स्वयं सहायता समूहों की सरगर्मी नाल हमायत कर रही है जो औरतों को माली तौर पर स्वतंत्र बनाने में बहुत अगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सम्मान मौके ते शक्तिकरण ते आधारित सरकार दे यतना ने एक अजिहा माहौल बनाउण विच मदद कीती है जिस विच औरतां अपनी पूरी समर्थता नूं महसूस कर सकण अते राष्ट्र निर्माण विच वधेरे मजबूती नाल योगदान पा सकण। श्री मोदी ने भारत दी नारी शक्ति दे विज्ञान पुलाड़ ते नवीनता वर्गे खेत्रां विच अपनी छाप छड्दे होए देख के खुशी प्रगटाई। उन्होंने कहा कि देश दी नारी शक्ति राष्ट्र निर्माण दी नींह है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश दीआं मावां भैणां ते धीआं अज हर खेत्र विच अपनी असाधारण प्रतिभा ते हुनर नाल भारत माता दी शान वधा रहीआं ने। राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने 21 जून नूं होण वाली नीट यूजी मुड़ परीक्षा लई परीक्षा दी मियाद 15 मिनट वधा के 195 मिनट कर दित्ती है। नवां समां दुपहर बाद 2 बजे तो शाम 5:15 तक होएगा। सोधी हुई परीक्षा दी मियाद विच लाजमी परीक्षा अमलां लई लोड़ींदा समां शामिल है। एजेंसी ने कहा कि इह सुधार पिछले कई सालां तों उम्मीदवारां तों प्राप्त फीडबैक दे आधार ते कीते गए ने। एजेंसी ने भी कहा कि इस गल नूं यकीनी बनाउण लई वचनबद्ध है कि नोट यूजी प्रीख्या उम्मीदवारां दीआं जरूरतां मुताबिक निरपक्ष सुरक्षित अते जवाबदेह ढंग नाल कारवाई करे। पेश एक रिपोर्ट।
1: एजेंसी ने प्रश्न पत्र दे नाल प्रदान कीती जाण वाली रफ वर्कशीट नूं 2 पन्नियां तों वधा के 4 पन्नियां तक कर दिता है। इह सुधार इस फीडबैक तों बाद कीता गया सी कि पुराना लेआउट कुछ विद्यार्थियां खास करके खब्बे हथ नाल लिखण वाले विद्यार्थियों लई असुविधाजनक सी। एनटीए ने कहा कि प्रीख्या डिजाइन विच छोटे सुधार भी एक महत्वपूर्ण प्रीख्या दौरान उम्मीदवारां दे अनुभव ते चंगा प्रभाव पा सकदे ने। इस लई इह उपाय लागू कीते गए ने जदों कि निरपक्षता अते सुरक्षा दे सर्वउच्च मियारां नूं बनाई रखा जाता है। उम्मीदवारों को यह भी सलाह दी जाती है कि वह दाखला कार्ड और जानकारी बुलेटिन में दी गई हदायतों को ध्यान नाल पढ़न और परीक्षा के सुचारू संचालन लई परीक्षा स्टाफ नाल सहयोग करन। ब्यूरो रिपोर्ट्स नाल आकाशवाणी खबरां लई जलंधर तो मैं राजेश बाली।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नवी दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा लई तैयारियों की समीक्षा करने वास्ते एक उच्च पदरी मीटिंग की प्रधानगी कर रहे ने। फौज मुखी जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के डायरेक्टर जनरल मीटिंग में मौजूद ने। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई शुरू होगी और 28 अगस्त संपूर्ण होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत सरकार असाम ते नागालैंड वालों दस्तखत किया गया त्रै धिरी समझौता उत्तर पूर्व विच दहाकियां तो चल रहे विवाद नूं खत्म कर देगा। एक सोशल मीडिया पोस्ट विच उन्होंने कहा कि समझौता खेतर विच तेल ते गैस दे भाल लई राह खोलेगा। उन्होंने अगे कहा कि समझौता भारत की एकता की एक मिसाल वजो खड़ा है जिथे दोवे राज ऊर्जा पक्षों आत्म निर्भर भारत के दृष्टिकोण नूं साकार करन लई विवादां नूं छड्ड दिंदे ने। सरकार ने संस्थागत सनअती अते व्यापारक गाहकां नूं परचून विक्रेतावां तों मोटर ईंधन अते हाई स्पीड डीजल खरीदण ते रोक ला दित्ती है। सरकार ने कहा कि वह घरेलू पेट्रोल पंपां तों अपनियां जरूरतां पूरियां करन। पछमी एशिया विच टकराव कारण आलमी सप्लाई लड़ियां विच विघन दरमियान स्थानक ईंधन दी घाट नूं रोकण लई फैसला लिया गया सी। पेट्रोल अते कुदरती गैस मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन विच कहा कि यह पाबंदियां 90 दिनों तक लागू रहनगियां। परचून विक्रेतावां प्रति गाहक प्रतिदिन वध तों वध 200 लीटर हाई स्पीड डीजल वेचण दे निर्देश दिते गए ने। मंत्रालय ने कहा कि यह आदेश संकट दौरान जमाखोरी नूं रोकण लई एक अस्थाई उपाय ने। इसने तेल कंपनियां ते परचून विक्रेतावां नूं आदेश की पालना नूं यकीनी बनाउण लई कहा है। ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ ਹੈ @EIRRNE ਜਲੰਧਰ। सूचना ते प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन, रेडियो ते संचार सेवावां नाल संबंधित दूरसंचार नियम 2026 दा खरड़ा जनतक सलाह

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी
3: प्रोग्राम तुसी सुन रहे हो मिड डे मेलोडीज अपनी दोस्त होस्ट आज रिया दे नाल। ते अगला जड़ा गीत और अली पेश करन जा रही हूँ हैगा है दीवाना करके लता मंगेशकर ते किशोर कुमार होरां दी आवाज़ विच, जो कि हैगा है मूवी मेरे जीवन साथी दा, जिसका निर्देशन किया है सुनील दर्शन ने, ते अभिनय किया है अक्षय कुमार, करिश्मा कपूर, अभिषा पटेल ते गुलशन ग्रोवर ने।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश, स्वागत करती हूं आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में।
1: नमस्कार, मैं हूं अजीत। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुविचार, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम राजकोट से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: वो लिखते हैं, भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करें, सारे दरवाजे खुल जाएंगे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको इतने सुंदर संदेश के लिए। जी हाँ श्रोताओ, भाग्य भरोसे बैठे रहने से बेहतर है कर्म करना, जो सफलता का आधार है।
2: जी,
1: पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम सुन लेते हैं।
2: अयोध्या धाम से राजा बाबू शर्मा, राम बाबू शर्मा, राज बाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा।
1: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे।

0: पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सतेंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
1: सिटी गोनियाना मंडी पंजाब से गुरप्रीत सिंह जसल जी।
0: ठाणे महाराष्ट्र से शोभा राणे जी।
1: आप सबको संदेश भेजने के लिए उमंग कार्यक्रम की ओर से आभार। स्वागत आप सबका एक बार फिर से श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओ, इस सप्ताह हमारी चर्चा का विषय दुनिया की विभिन्न पेय संस्कृतियों पर रहा है।
0: हमने चर्चा की चाय की, कॉफी की और कोको की। आज हम बात करेंगे एक और पेय की जो चाय, कॉफी और कोको के बाद सबसे अधिक लोकप्रिय है। ये पेय बहुत स्वास्थ्यवर्धक पेय माना जाता है।
1: जी हाँ श्रोताओ, हम बात कर रहे हैं सोया पेय की।
0: जी,
1: इसकी अपनी पेय संस्कृति है, खासकर पूर्वी एशिया में। सोया केवल पेय ही नहीं लेकिन एक स्वास्थ्यवर्धक भोजन भी है।
0: जी,
1: कई समुदायों में खान पान और संस्कृति का ये हिस्सा रहा है,
0: जैसे चीन, जापान, कोरिया और वियतनाम के समुदायों में। इन देशों में सोया दूध सदियों से सुबह के नाश्ते का अभिन्न अंग रहा है। इन देशों में सोया पेय को स्वास्थ्य, पौष्टिकता और ऊर्जा से जोड़कर देखा जाता है।
1: यदि इसकी उत्पत्ति की बात करें तो सोयाबीन मूल रूप से चीन का माना जाता है।
0: जी,
1: ऐतिहासिक और आनुवंशिक अध्ययनों से पता चला है कि चीन की येलो रिवर या पीली नदी की घाटी में यह पहली बार पाया गया।
0: जी,
1: प्राचीन चीन में सोया को गेहूं और धान की तरह पारंपरिक मुख्य फसलों में गिना जाता था।
0: यहां से सोया धीरे धीरे व्यापारिक मार्गों से भारत, कोरिया, जापान, एशिया के अन्य देशों में पहुंचा। सबसे बाद में ये यूरोप और अमेरिका समुद्री मार्गों से पहुंचा।
1: श्रोताओ, इन देशों में सोया पेय उतना ही लोकप्रिय है जैसे भारत में चाय। सामुदायिक खेलकूद प्रतियोगिताओं, जूडो, कराटे और अन्य खेलों में भी इसका बड़ा महत्व है।
0: जी,
1: खिलाड़ी प्रतियोगिताओं के समय इसका विशेष रूप से सेवन करते हैं ताकि उनकी शारीरिक क्षमता और स्फूर्ति बनी रहे।
0: ये गर्म या ठंडा दोनों रूपों में पिया जाता है। कई देशों में सोया पेय के विशेष और आकर्षक स्टॉल लगाए जाते हैं जहां लोग जमा होकर इसे पीते और आपस में बातचीत करते हैं।
1: जहां तक इसकी पैदावार की बात है, ये एक पौध आधारित समृद्ध प्रोटीन का स्रोत है जिसे कई लोग डेयरी के विकल्प के रूप में भी लेते हैं।
0: तकनीकी रूप से ये दलहन यानी दाल है। इसे वार्षिक फसल भी कहते हैं क्योंकि ये साल में एक बार ही होती है। इसके पौधे में हरी पत्तियां, फूल और फलियां होती हैं। इन फलियों में बीज होते हैं। इसके सबसे बड़े उत्पादक देश ब्राजील, अमेरिका, अर्जेंटीना, चीन और भारत हैं।
1: यदि भारत की बात करें तो जलवायु के आधार पर मुख्य रूप से ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में उगाया जाता है। सोया के कई उपयोग हैं जैसे
0: सोया दूध, टोफू, सोया आटा, सोया तेल, सोया सॉस और पशु आहार।
1: अब आइए बात करते हैं आयुर्वेद की। श्रोताओ, सोयाबीन की चर्चा आयुर्वेद के प्राचीन मुख्य ग्रंथों में तिल, मूंग, उड़द और मसूर की तरह स्पष्ट रूप से तो नहीं मिलती, लेकिन आधुनिक आयुर्वेदिक व्याख्याओं में इसे अत्यंत पौष्टिक और शरीर को बल देने वाला पेय माना जाता है।
0: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी सोयाबीन के बारे में। इसकी पेय संस्कृति बहुत रोचक रही है, खासकर मध्य पूर्व एशिया में, लेकिन अभी एक वैश्विक पेय माना जाता है और इसकी एक अलग पहचान है।
1: तो श्रोताओ, ये थी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है?
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर।
0: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CITNCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है चींटी।
0: हिंदी की पाठ्य पुस्तक पर आधारित इस कार्यक्रम को एक सुंदर गीत द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिसमें चींटी के परिश्रम और लगन के बारे में बताया गया है और संदेश दिया गया है कि हमें भी सफलता प्राप्त करने के लिए चींटियों की तरह लगनशील और परिश्रमी होना चाहिए।
1: सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। हर पल चलती जाती चींटी,
2: हर पल चलती जाती चींटी,
1: श्रम का राग सुनाती चींटी,
2: श्रम का राग सुनाती चींटी,
1: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
2: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
1: दाना चुनकर लाती चींटी,
2: दाना चुनकर लाती चींटी,
1: सचमुच कैसी कलाकार है,
2: सचमुच कैसी कलाकार है,
1: घर को खूब सजाती चींटी,
2: घर को खूब सजाती चींटी,
1: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
1: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन बन पर बड़े।

0: दे।
1: नहीं कभी घबराती चींटी,
0: नहीं कभी घबराती चींटी,
1: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
0: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर
1: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
0: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
1: काम बड़े करके दिखलाती,
0: काम बड़े करके दिखलाती,
1: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
0: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी।
1: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
0: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
1: हमको यही सिखाती चींटी,
0: हमको यही सिखाती चींटी।
1: अभी आपने सुना इस कविता का वचन, आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

सुना आपने? कैसा लगा ये गीत? अच्छा लगा ना? तो अब सुनते हैं चींटियों के बारे में कुछ और मजेदार बातें। चींटियां बहुत मेहनती होती हैं। वे समूह में यानी मिलजुल कर काम करती हैं। और तो और, आपको मालूम है अकेली चींटी अपने वजन से 50 गुना अधिक वजन उठा सकती है। इतना ही नहीं, आपने जरूर देखा होगा कि यदि कोई चींटी वजन नहीं उठा पाती तो दूसरी चींटियां तुरंत उसकी मदद के लिए आ जाती हैं। है ना मजेदार बात? तो क्या सिखाती हैं हमें ये चींटियां? हमें हमेशा मिलजुल कर रहना और मेहनत से काम करना चाहिए। अच्छा, अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा मालूम कीजिए कि चींटियां कितने रंगों की होती हैं। एक बात और, इस कविता में चींटी को कलाकार कहा गया है। जरा सोचिए और बड़ों से भी पूछिए कि उन्हें कलाकार क्यों कहा गया है। चींटी, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंग लिंगडो, संगीतकार विकास शंकर, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, कविता वाचन स्वर सोहम, वान्या और मनन, गायन स्वर चार्वी, नव्या और एंजल, निर्माण सहयोग चेतना शर्मा, निर्देशन तथा निर्माण अजीत होरो। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम चींटी। आशा है कि आपको जरूर पसंद आया होगा।

0: क्यों ना अपनाएं खुशियां, अपनाकर मनोदर्पण। कॉल करें 8448440632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: और आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है गांव की धरती।
2: कार्यक्रम में भारत के ग्राम्य जीवन के बारे में बताते हुए वहां के सरल जीवन और प्राकृतिक सौंदर्य का बखान किया गया है। कार्यक्रम में गांव की हरियाली, खेतों और स्वच्छ पर्यावरण की भी चर्चा की गई है और संदेश दिया गया है कि हम भी अपने पर्यावरण का विशेष ध्यान

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गांव की धरती, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है झरना।
1: ये कार्यक्रम भूगोल की एक पाठ पर उपलब्ध जानकारियों पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि झरनों का निर्माण कैसे होता है। इन जानकारियों को एक रोचक गीत और संवादों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

0: जादुई पिटारा है ना मजेदार साथियों। जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है, तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को मंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है। रेडियो डॉक्टर में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। स्वीकार करिए शालिनी मित्तल का नमस्कार। आज का विषय है मेंटल हेल्थ ऑफ एल्डरली, बुजुर्गों में मानसिक स्वास्थ्य। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जी हाँ, हम शारीरिक स्वास्थ्य की बात करते हैं और अक्सर हमारे कार्यक्रमों में हम बहुत सारी चीजें आप तक पहुंचाते हैं। कोशिश ये होती है कि जीवन के हर पहलू, स्वास्थ्य के हर पहलू की जानकारी आप तक हम पहुंचा सकें। और जब हम शारीरिक स्वास्थ्य की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कौन सी बीमारियां हो सकती हैं और किस तरह से

0: को पहचाने, सिम्टम्स को ढूंढें और फिर इलाज कराएं। पर क्या आप ये जानते हैं कि शारीरिक बीमारी के साथ साथ मानसिक बीमारी या मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है? जी हाँ, बुजुर्गों में मानसिक स्वास्थ्य एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, फिर भी शारीरिक स्वास्थ्य की तुलना में हम इस पर अक्सर कम ध्यान देते हैं। जैसे जैसे व्यक्तियों की उम्र बढ़ती है, उन्हें जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारकों के संयोजन के कारण विभिन्न मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। और बुजुर्गों में जो ये मानसिक समस्या या मानसिक स्वास्थ्य की जो प्रॉब्लम्स आती हैं या जो समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, वो सारी जानकारी हम चाहते हैं कि आज आपको रेडियो डॉक्टर के माध्यम से मिले। हमारे साथ हमारी विशेषज्ञ, हमारी स्पेशलिस्ट आ चुके हैं स्टूडियो में, आपका उनसे तारुफ करा दें। डॉक्टर स्वाति केडिया गुप्ता हमारे साथ हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी में एम्स न्यू दिल्ली में। स्वागत है डॉक्टर स्वाति आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में एफएम के इस कार्यक्रम में। तो रेडियो डॉक्टर में जैसे मैंने कहा कि हम अक्सर बात हर पहलू की करना चाहते हैं, और स्वास्थ्य के जब हम हर पहलू की जब बात करते हैं तो मानसिक स्वास्थ्य कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार हम शारीरिक पर ही रुक जाते हैं कि ये बीमारी है वो बीमारी है, और ये भूल जाते हैं कि हो सकता है ये बीमारी की उपज जो है वो मानसिक लेवल पे हुई हो। तो कितना इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, ये बताएं।
1: आपने बहुत अच्छी चीज बोली एक शालिनी जी, कि कई बार शारीरिक बीमारियां जो हैं वो मानसिक प्रॉब्लम्स की उपज से भी हो सकती हैं। हमारे देश में बहुत एक मान्यता है कि अरे बूढ़े लोगों में फिजिकल प्रॉब्लम्स या शारीरिक परेशानियां होंगी, बट मानसिक स्वास्थ्य की तरफ उतना ध्यान नहीं जाता है। बीमारी होती भी है तो लगता है अरे ठीक है, हो जाएगी ठीक, छोटी मोटी चीज है, बूढ़े हैं, इनको तो ये दिक्कतें होंगी। बट बहुत सारे ऐसे अभी अध्ययन हुए हैं जिनमें ये देखा गया है कि मानसिक बीमारियां बूढ़ों में उतनी ही कॉमन या कुछ बीमारियां जनरल पॉपुलेशन से भी ज्यादा बूढ़े लोगों में देखी गई हैं।
0: अच्छा।
1: तो बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा शरीर और हमारा मन आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो मानसिक बीमारियों पे अगर ध्यान नहीं देंगे तो बहुत सारी चीजें मिस हो जाएंगी उनके स्वास्थ्य।
0: सही बात आपने बोली, और ये भी बात बिल्कुल सही है कि कई बार जब हम मानसिक स्वास्थ्य या मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो हम अक्सर ये कहते हैं कि जो यंगस्टर्स हैं या वर्किंग जो लोग हैं या नई नई शादी हुई है और 20s, 30s में है, 40s तक में है, इनको ज्यादा होगी, बिकॉज उनके पास इतने सारे काम है, उनके पास समय नहीं है सोचने का, भागदौड़ बहुत है जिंदगी में, उसके कारण स्ट्रेस है और स्ट्रेस के कारण उनका मेंटल हेल्थ खराब है, ये भी कहीं जुड़ता है। पर जैसे आपने कहा कि एल्डरलीज को भी होता है, तो हम जरूर इसके कारण भी जानना चाहेंगे और किस तरह से हम इससे डील करें, हमारे जो बुजुर्ग हैं वो कैसे इससे डील करें, ये भी हम चाहेंगे इस कार्यक्रम में हम बात करें। पर इस कार्यक्रम में हमारे श्रोता जुड़ते हैं डॉक्टर स्वाति, और वो अपनी अपनी समस्याओं के साथ हमारे इस कार्यक्रम में इस विश्वास के साथ जुड़ते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से उनको बहुत सारी उनकी समस्याओं का घर बैठे समाधान मिल जाएगा। तो आज भी हम इस कार्यक्रम में यही चाहेंगे कि आपकी अगर कोई समस्या है, आपके घर में भी कोई बुजुर्ग है, ऐसी कोई समस्या आपको लगती है कि उनको मानसिक स्तर पर आप फील कर रहे हैं, और नहीं तो जानकारी के लिए भी आप, हर किसी को तो उस स्टेज पे पहुंचना ही है, तो कोई जानकारी चाहते हैं आप इस विषय पर जो कि है मेंटल हेल्थ ऑफ एल्डरली यानी बुजुर्गों में मानसिक स्वास्थ्य, तो जरूर हमारे साथ जुड़िए। जीवन चलने का नाम है और ये चलती ही रहेगी, और इसे चलना भी है, पर हमें खुश रहकर अपने जीवन को बिताना है, रुकना नहीं है भाई, कहीं चलते जाना है।

0: जी हाँ, रुकना नहीं है हार के, और जीवन चलने का ही नाम है, चलते जाना है। पर कितनी अच्छे से आप अपनी स्वास्थ्य की देखभाल करते हैं, मेंटल एंड फिजिकल एज वेल एज सोशल एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑल्सो। बहुत जरूरी है कि हम पूरी तरह से स्वस्थ हों जिससे कि हम जिंदगी को भरपूर जी पाएं। हमारे एक श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं और आज हम बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ ऑफ एल्डरली पर, बुजुर्गों के मानसिक स्वास्थ्य पर। तो पहले इनसे बात करते हैं। जगदीप सिंह जी हमारे साथ हैं कॉल पर। हेलो, नमस्ते जगदीप जी, स्वागत है आपका।
1: देखो 80 साल उम्र है मेरी सर।
0: जी जी।
1: मेरे घुटनों में दर्द 5-6 साल से हो रहा
0: है।
1: इलाज तो कर रहे हैं, भाई वही इलाज होता है, गोली दर्द की देते हैं और ट्यूब देते हैं। 5 साल से यही इलाज हो रहा है। अब 6 महीने से मेरा हाथ कांपने लग गया। वो डॉक्टर कहता है कि ये घुटनों की वजह से हाथ कांप रहा है। ऐसा ये जानना चाहते हैं कि घुटनों का दर्द इससे साथ है या नहीं है, ये पता करना चाहते हैं।
0: ये घुटनों के दर्द से रिलेटेड है कि नहीं, आप ये जानना चाह रहे हैं?
1: जी
0: जी जी, ठीक है। मैम से पूछते हैं, मैम आपका प्रश्न सुन रही हैं।
2: जगदीप जी, ये बिल्कुल मेरा एरिया नहीं है। आप कहाँ के रहने वाले हैं?
1: दिल्ली के
2: हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि हमारा एम्स में नेशनल सेंटर फॉर एजिंग, जो एक सर्विसेज शुरू हुई है जो सिर्फ बूढ़े लोगों के लिए है, वहाँ पर हमारे हड्डी के डॉक्टर भी आते हैं। आप वहाँ पर एक बार आ सकते हैं, उनका दिन होता है सोमवार, उसमें आके आप उन्हें एक बार दिखा लीजिए, वो ज्यादा अच्छे से इस बात का जवाब दे पाएंगे।
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद जगदीप जी बात करने के लिए, अपनी समस्या शेयर करने के लिए। और जैसा हमने कहा, हमने कार्यक्रम के आरंभ में भी कहा डॉक्टर स्वाति, कि हम फिजिकल जो प्रॉब्लम्स होती हैं उस पर ही ज़्यादा कंसंट्रेट भी करते हैं और दिमाग भी वहीं ज़्यादा चलता है, यहाँ दर्द है या ये बुखार है या बढ़ती उम्र की जो समस्याएँ होती हैं उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, चाहे वो बीपी हो चाहे जो भी बीमारी हो, लेकिन मेंटल जो प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं उसको बहुत इग्नोर किया जाता है। और यही हम चाहते हैं आज इस कार्यक्रम में आपको बताएं कि इनको इग्नोर नहीं करना है, ये भी उतनी ही इंपॉर्टेंस रखती हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि मेंटल हेल्थ जो इश्यूज की हम बात कर रहे हैं वो उसकी क्या टाइप्स हैं, कितने प्रकार के हो सकते हैं?
2: सबसे कॉमन जो देखा गया है इस उम्र में वो है डिप्रेशन। डिप्रेशन जैसे हम सब जानते हैं कि जिसमें उदासीपन रहना, लेकिन बूढ़े लोगों में कई बार देखा गया है कि उनमें चिड़चिड़ापन ज़्यादा रहता है, एनर्जी लेवल्स बहुत कम हो जाएंगे, वो बहुत नकारात्मक बातें करेंगे, पहले जो चीज़ें अच्छी लगती थी वो उन्हें अच्छी नहीं लगेंगी, ज़्यादा सोने लगेंगे। कुछ लोग होते हैं जो जिनको नींद में दिक्कत भी होती है, भूख ख़त्म हो जाएगी, ऐसा लगेगा कि जीने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद दूसरा जो चीज़ देखी

0: गई है जिसको कहते हैं मति भ्रम या डिमेंशिया। डिमेंशिया जिसमें याददाश्त बहुत ज्यादा खराब होने लगी है, आपको चीजें याद नहीं रहती, छोटी छोटी चीजें, कब खाना खाया, आज क्या किया, पिछले 24 घंटे में क्या किया, सवालों को बार बार दोहराते हैं आप, छोटे मोटे डिसीजंस लेने में भी दिक्कत होने लगती है। सो डिमेंशिया। फिर हो गया आपका एंग्जाइटी, हम बहुत कॉमनली देखते हैं आगे क्या होगा, क्या मेरा कोई ख्याल रखने वाला होगा, मुझे कुछ हो गया तो।
1: और हम अक्सर ये भी कहते हैं कि इनके पास कुछ काम नहीं है करने के लिए, तो इसलिए ये ओवरथिंकिंग करते हैं। तो क्या ये उसी से होता है कि आप कुछ नहीं करते हो? तो ये भी मैं जरूर बात करूंगी कि अपने आप को बिजी रखना कितना जरूरी है। पर हमारे एक श्रोता है, वो हमारे साथ जुड़ी है, मिसेस बेदी, तो आइए इनसे बात कर लेते हैं। हेलो।
2: हेलो
1: जी, स्वागत है मिसेस बेदी आपका रेडियो डॉक्टर में।
2: जी जी, डॉक्टर साहब दोनों को बहुत नमस्कार।
1: नमस्कार जी, बताएं आप क्या प्रश्न करना चाहेंगी।
2: ऐसा है डॉक्टर, मैं हूँ 74 की, पर मेरी लाइफस्टाइल है 16 साल वाला। मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि इस एज में ये मत सोचिए कि मैं बुढ़ा हो गया। कहते हैं दिल हो जवान तो आप जिंदा रहे।
1: तो आज तो हम यही कार्यक्रम कर रहे हैं बेदी जी। हाँ। शॉर्ट में अपना लाइफस्टाइल बता दीजिए सभी श्रोताओं को, 16 साल के बन जाए हम सब।
2: अपने आप को, क्योंकि मैं रेडियो से बहुत जुड़ी हुई हूँ, एक वर्ल्ड फेमस आरजे, वो मेरी बेटी है, तो उसने मुझे बहुत जिंदा किया। मैं बड़ी नेगेटिव थी क्योंकि सारे छोड़ गए, पेरेंट्स छोड़ गए, चले गए, खत्म हो गए, हस्बैंड चले गए, तो मेरा थोड़ा सा कुछ पार्टनरशिप के झगड़े थे, उससे मैं बड़ी परेशान थी। तो मुझे कहते हैं ना, कोई आपको ऐसा साथी मिल जाए जो जिंदगी दे, तो उसने मुझे पॉजिटिविटी दी। और अब मैं क्या करती हूँ, 25 साल है मैं योग में हूँ। मैं इतनी बीमार थी कि दो कदम नहीं चल सकती थी, अब 19 साल से उसी सेंटर की मैं हेड हूँ।
1: चलिए, तो योग ने बहुत आपकी मदद की, लेकिन कुछ
2: जिंदा ही उन्होंने।
1: हाँ, तो कोई प्रश्न है आपका? हाँ, कि
2: नहीं नहीं, मैं खुद साइकोलॉजी की स्टूडेंट रही हूँ ना, तो मैं समझती हूँ। मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ सब बुजुर्गों को।
1: जी बताइए।
2: एक तो अपने आप को बुजुर्ग मत समझिए, दूसरा बच्चों के साथ मिलके रहिए, उनको ज्यादा टोका टक्की मत करिए, उनको जो बात समझानी है थोड़े प्यार से समझाइए, नहीं तो बच्चे भी चिढ़ जाते हैं और उनके आगे जो बच्चे हैं वो और भी चिढ़ जाते हैं। थोड़ा सा हम लोगों को भी कोऑपरेट करना पड़ेगा उनके साथ, ठीक है। और मैं देखिए योग करती हूँ, कुछ मैं बिजनेस करती हूँ कि जो मेरे हाथ कभी टेढ़े थे बिल्कुल, अब मैं उनसे केक सेल करती हूँ, पिकल चटनी जैसे सेल करती हूँ, बिजी बहुत।
1: जी जी, तो आज जो कार्यक्रम में बेदी जी, मैं यहाँ रोकना चाहूंगी मिसेस बेदी आपको, जो कार्यक्रम में हमें डॉक्टर साहब से बात करनी है, वो सारी बातें आप अपनी तरफ से एयर पर बोल रही है।
2: मेरा मैसेज कभी
1: जी जी, आपका मैसेज
2: बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लिया है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: सबको दिल से समझना चाहिए जो ये कह रही हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, हमारी ये कोशिश है।
2: अगली बात मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप उनकी बातों को ऐसे अंदर, जैसे कहते रोटी खा ली और पेट में चले जाएं वो बातें।
1: बिल्कुल बिल्कुल
2: बिल्कुल, और ये आपने बहुत अच्छा, थैंकफुल हूँ मैं आपकी कि आपने ये टॉपिक चुना।
1: और हम आपके थैंकफुल हैं मिसेस बेदी, आप जैसे श्रोता हैं तो हमें बहुत सारी नई नई चीजें भी पता लगती हैं, और हमें ये भी पता लगता है कि हमारा कार्यक्रम सुना जा रहा है, पसंद किया जा रहा है।
2: आपको बताओ, मेरी क्लास का टाइम है, पर आज मैं 5 मिनट का लेट से हूँ आपसे बात करने
1: जाना। चलिए, धन्यवाद बहुत बहुत कॉल करने के लिए,
0: थैंक यू।
1: और एक और श्रोता वेट कर रहे हैं, उनकी कुछ समस्या है। हेलो राजेंद्र जी।
3: जी शालिनी मैम और डॉक्टर साहिबा दोनों को नमस्कार।
1: जी नमस्कार।
3: अब सवाल मेरा ये है कि आप बुजुर्ग कहते किसको हैं, पहले मैं जानना चाहूंगा। 65 साल से ऊपर या 75-80-90 साल से ऊपर, किसे आप बुजुर्ग मानेंगे? दूसरा सवाल मेरा ये है, कहते हैं कि चिंता ही चिता तैयार कर देती, तो मानसिक रोग हो ही ना, इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? डाइट, एक्सरसाइज या क्या एटमोसफेयर सरकम क्या?
1: जी बिल्कुल, इसकी बात हम पूरे कार्यक्रम में करते रहेंगे, आप हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़े रहिए
3: प्लीज। तीसरा सवाल मेरा ये है, एंग्जाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन और टेंशन में क्या फर्क है, प्लीज जरा इसको डिटेल विस्तार से समझाएं बड़े में। और मुझे चौथा सवाल है, मेरे को स्लीप एपनिया, स्लीप डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है मैं, तो प्लीज इससे मैं कैसे दूर रहूं, प्लीज का उपाय बताएं।
1: जी जी,
3: मेहरबानी।
1: बहुत सारी बातें आप जानना चाहते हैं राजेंद्र जी, तो इसको हम धीरे धीरे करके कार्यक्रम के दौरान लेते रहेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो इसको इफेक्ट करती हैं मेंटल हेल्थ को, और डॉक्टर स्वाति आज हमें इस कार्यक्रम में यही बताने वाली हैं। तो सबसे जो आप इनकी पहला जो प्रश्न था, बुजुर्ग किसे कहते हैं, पहले तो इसे ही समझ लेते हैं।
0: तो राजेंद्र जी नमस्ते, बहुत अच्छे सवाल पूछे आपने। तो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जो डेफिनेशन है, तो बुजुर्ग वो है जो 60 से ऊपर है, जहाँ पे हम सीनियर सिटीजन कहते हैं। बट मानसिक रूप से अगर आप अपने आप को बुजुर्ग नहीं मानते हैं तो बुजुर्ग नहीं है। ऐसा

0: नहीं है कि बस 60 के हो गए तो अब तो हम बुजुर्ग हो गए. बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे पहले हमारी जो श्रोता जुड़ी उन्होंने कहा कि मैं अपने आप को बुजुर्ग मानती नहीं हूँ, मैं 16 साल जैसा महसूस करती हूँ.
1: जी.
0: मजाक में बोले तो एज इज जस्ट अ नंबर, एक नंबर है, आप उसे कैसे लेते हैं. प्रिवेंशन की यहाँ पे आपने बात करी कि हम कैसे उस चीज को रोकें, कैसे हम इंश्योर करें कि मानसिक बीमारियां ना हो, उसके कुछ कुछ चीजें हम कहते हैं. सबसे जरूरी है एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज. जैसे आप चाहे योगा करिए, वॉक पे जाइए, जिम ज्वाइन कर लीजिए, कोई क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए, बट फिजिकल एक्सरसाइज बहुत जरूरी है. उसके अलावा अपनी डाइट का ख्याल रखना. आजकल जैसे अब छोटे बच्चों को भी अगर हम देखें, यंगस्टर्स को, सबकी डाइट बहुत खराब हो गई है. तो न्यूट्रिशियस खाना खाना, फ्रूट्स वगैरह का इंटेक, पानी का इंटेक अपना ठीक रहना, किसी भी नशे वाली चीज से दूर रहना, जैसे निकोटीन हो गया, सिगरेट्स हो गई, टोबैको हो गया, अल्कोहल हो गया, उनका सेवन या तो बिल्कुल नहीं करना या कम से कम करना. उसके अलावा जैसे मेडिटेशन के बहुत अच्छे इफेक्ट देखे गए हैं कि मेडिटेशन या प्राणायाम वगैरह करने से फर्क पड़ता है. सपोर्ट सिस्टम्स, आपकी रिलेशनशिप्स, हम लोग सब काम में डूबे रहते हैं कि काम करना है, पैसे कमाने हैं, ये करना है, बट बहुत सारी स्टडीज हुई हैं जिन्होंने देखा है कि रिलेशनशिप्स सबसे इंपॉर्टेंट हैं आपके मेंटल वेलबींग के लिए. और वो भी ये नहीं कि 15 रिलेशनशिप, अगर 5 रिलेशनशिप भी है लेकिन वो बहुत अच्छी हैं, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करती हैं, तो वो हमारे लिए बहुत जरूरी है. एंड लास्टली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अपने ब्रेन को एक्टिव रखना. कोई नई चीज सीख ली, पजल्स वगैरह करते रहे, गेम्स खेले, अपने लोगों से बात करी, अपने काम को, रूटीन को फॉलो करते रहे, तो ब्रेन को एक्टिव रखना बहुत जरूरी है.
1: और एक और जो प्रश्न उन्होंने पूछा, वो जो हम उससे पहले बात कर ही रहे थे, आपने अलग अलग जो टाइप्स ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज पे हम बात कर रहे थे, डिप्रेशन की बात आपने कर दी थी, एंग्जाइटी और स्ट्रेस, इन सबका डिफरेंस जो है वो हमारे और भी बहुत सारे श्रोता जानना चाहेंगे.
0: राइट. सो टेंशन और स्ट्रेस तो ऑलमोस्ट सिमिलर चीज है. टेंशन है कि बस किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में सोचना कि अरे कल एग्जाम है, कैसे होगा, या कल मुझे कहीं जाना है तो कैसे जाऊंगी. स्ट्रेस है अगेन वेरी सिमिलर, जहां पे हम किसी चीज को लेके परेशान हो रहे हैं कि ये काम कैसे होगा, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, हमें दिक्कत हो रही है उसको प्लान करने में या मैनेज करने में. तो ये दोनों चीजें तो आपके जनरल डे टू डे लाइफ में सबके ही चलते हैं. जब हम एंग्जाइटी और डिप्रेशन की बात करते हैं तो हम एक मानसिक बीमारी की बात कर रहे हैं. एंग्जाइटी जिसमें एक ऐसा समय जहां पे लंबे समय तक बिना किसी बहुत ज्यादा वजह के आपको परेशानी चल रही है, आप रेस्टलेस फील कर रहे हैं, दिल की धड़कन बढ़ रही है, सांस लेने में दिक्कत होती है, या हर समय बहुत ही ज्यादा ऐसा महसूस होता है कि सर चकरा रहा है, या ठीक नहीं लग रहा है,
1: होना कि
0: अच्छा नहीं
1: अच्छा
0: लग रहा
1: नहीं
0: है
1: लग
0: अंदर
1: रहा है.
0: से और डिप्रेशन जैसे मैंने बताया, जहां पे आपका मन उदास या चिड़चिड़ा हो जाएगा, वहां पे उसके साथ साथ भी एंग्जाइटी हो सकती है. एंग्जाइटी और डिप्रेशन यूजुअली एल्डरली में हमने देखे हैं कि साथ साथ चलते
1: अच्छा.
0: हैं, बट डिप्रेशन का सबसे कॉमन फीचर रहेगा कि आपका मन परेशान रहेगा, चाहे वो चिड़चिड़ा रहे या वो दुखी रहे. एंग्जाइटी में फिजिकल सिम्टम्स ज्यादा आएंगे, पेट जल्दी खराब हो गया है, या कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, दिल की धड़कन बहुत बढ़ रही है, हाथ पैर में कंपन हो रहा है.
1: तो ये एंग्जाइटी और डिप्रेशन ये अलग अलग कारणों से हो सकते हैं या सेम कारण से ही ये दोनों अलग अलग कैटेगरीज हो जाती है?
0: सेम कारण से भी हो सकते हैं. किसको, जैसे मान लीजिए कोई लॉस हुआ आपके किसी के यहाँ, आपके किसी की डेथ हो गई, तो अब उसकी वजह से किसी को एंग्जाइटी भी हो सकती है कि मेरे साथ ऐसा हो गया तो क्या होगा, और वहीं डिप्रेशन भी हो सकता है कि अब मैं उस इंसान के बिना कैसे जीऊं. कभी कभी कुछ चीजों में जैसे एल्डरली में हम लोग देखते हैं हेल्थ रिलेटेड एंग्जाइटी ज्यादा रहती है. ऐसा नहीं है कि उनको डिप्रेशन है, बट उनको बस ये एंग्जाइटी है कि मुझे कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए, मैं दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट ना हो जाऊं, या मेरा काम ठीक से चलता रहे वाला. डिप्रेशन ज्यादातर उन लोगों में देखा गया है जहां लोनलीनेस बहुत ज्यादा होगी, या पहले डिप्रेशन की हिस्ट्री रही है, या आपको अभी रिसेंटली कोई लॉस हुआ है, उन सब में डिप्रेशन ज्यादा देखा गया है.
1: तो मतलब जैसे कुछ अननोन का फियर जो होता है उसको एंग्जाइटी समझे, है ना. और अगर आपको एक्चुअल कोई ऐसी फीलिंग हो रही है वेरी लो, वेरी डल, देन इट इज समथिंग डिप्रेशन के जैसा. तो चलिए यहाँ पर एक म्यूजिकल ब्रेक लेंगे, एक गाना सुनेंगे, लौट कर आते हैं. और गाने भी बहुत अच्छे होते हैं अपने मूड को ठीक रखने के लिए, फ्रेश रखने के लिए. गाना सुनना भी कहते हैं ना स्ट्रेस को रिलीव करते हैं, तो हम भी इस कार्यक्रम में बीच बीच में आपको स्ट्रेस फ्री करते रहते हैं. स्ट्रेस नहीं लेना है, पर हाँ कार्यक्रम को में जो भी हम लेकर आ रहे हैं उसको समझना है, क्योंकि ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है. सुनते रहिए रेडियो डॉक्टर, मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त शालिनी मित्तल.

0: इस भागती दौड़ती जिंदगी में भी तन और मन को निरोग किया जाए।
1: क्यों ना रेडियो डॉक्टर सुनकर स्वस्थ रहा जाए।
0: रेडियो डॉक्टर प्रतिदिन दोपहर 3 बजे FM रेनबो 102.6 MHz पर।
1: कार्यक्रम का फीडबैक और सुझाव भेजें health@delhi@gmail.com पर।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: वेलकम बैक, आप हैं रेडियो डॉक्टर में। आज बात हो रही है बुजुर्गों में मानसिक स्वास्थ्य और हमारे साथ हमारी एक्सपर्ट डॉक्टर स्वाति केडिया गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर क्लिनिकल साइकोलॉजी एम्स न्यू दिल्ली से। ब्रेक पे जाने से पहले हमने कुछ बात की, कॉलर्स भी हमारे साथ जुड़े, पर एक मैसेज लेना चाहूंगी। यहाँ पर परिधि लिख रही है दिल्ली से, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग ग्रेट टॉपिक्स फॉर अस शालिनी मैम। क्वेश्चन ये है, कैन पुअर मेंटल हेल्थ ऑल्सो लीड टू बॉडी पेन्स? जो हम शुरू में बात कर रहे थे ना कि फिजिकल मेंटल जुड़ा हुआ है, आपने कहा, तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसी की तरफ है ये, कि अगर पुअर मेंटल हेल्थ है तो क्या बॉडी पेन्स में मैनिफेस्ट हो सकता है? और इन्होंने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया है कि आई हैव नोटिस दैट ऑन डेज आई एम वेरी स्ट्रेस्ड माय लेग्स स्टार्ट्स पेनिंग व्हेन आई गो टू स्लीप। तो क्या ये रिलेशन आपस में है?
2: हाँ परिधि जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि स्ट्रेस की वजह से कभी कभी हमें बॉडी पेन्स वगैरह हो सकते हैं, चाहे वो लेग्स में हो, चेस्ट में हो, बैक में हो। उसका इलाज बेटर रहेगा कि आप एक बार किसी स्पेशलिस्ट से मिलने, चाहे साइकोलॉजिस्ट से या साइकेट्रिस्ट से, जो बाकी चीजों को भी असेस कर सके कि कोई अंडरलाइंग एक तो फिजिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, और दूसरा अगर स्ट्रेस है तो क्या उसमें सिर्फ काउंसलिंग की जरूरत है या दवाई की भी जरूरत है अगर वो डिप्रेशन की तरफ जा रहा है तो। सो बेस्ट रहेगा कि मिल लीजिए, क्योंकि दोनों रिलेटेड हो सकते हैं
1: जी। और हमारे श्रोता हमारे साथ फोन लाइन पर भी जुड़े हैं, यामिन भाई से बात कर लेते हैं।
3: नमस्कार जी।
1: जी नमस्कार यामिन भाई,
3: मैम को भी नमस्कार
2: जी। नमस्ते,
3: मैं जानना चाह रहा था जैसे कि बुजुर्गों को हम खाना वगैरह टाइम पे देते हैं, सबको दवाई वगैरह टाइम पे देते हैं, लेकिन जब भी वो चिल्लाते हैं, कहते हैं और उसी शेयर करते हैं, तो ये क्या बीमारी हो जाती है, वो कहाँ दिखाएं इनको?
1: मुझे जहाँ तक समझ में आता है यामिन भाई, ये कहना चाहते हैं कि हम उनकी केयर तो कर रहे हैं पर फिर भी उनको कहीं ना कहीं वो सेटिस्फाइड नहीं है या हाइपर हो जाते हैं, क्या ऐसा होता है?
2: हाँ जी, वो हो सकता है कि वो सेटिस्फाइड ना हो, हाइपर हो जाए, उस समय खुद को बुरा लगता है। मान लीजिए आप उनकी केयर कर रहे हैं और वो सामने किसी को कह रहे हैं कि मेरा तो कोई देखभाल ही नहीं करता, या मेरे साथ तो ये टाइम नहीं स्पेंड करता, तो वो चीज खुद को बहुत हर्ट कर सकती है। बट अगर हम उस समय अपने आप को हटाकर उन्हें देख पाए कि चलो वो परेशान है, तो ऐसा नहीं है कि वो हमें जानबूझ के हर्ट करना चाहते हैं या मैनिपुलेट कर रहे हैं, सो थोड़ा सा पेशेंस रख के उनके साथ डील करें, या तो उस सिचुएशन से हट जाएं या उन्हें प्यार से थोड़ा समझा लें। और आपको अगर बहुत उस चीज का स्ट्रेस हो रहा है तो आप जाके अपने किसी फ्रेंड से या अपने किसी और फैमिली मेंबर से उस बारे में बात कर लें, बट उस समय अगर आप उनके ऊपर वापस चिल्लाएंगे तो सिचुएशंस खराब ही होंगी।
1: जी जी, और ऐसे ही एक और

0: मैसेज आया, पहले हम एक कॉल ले लेते हैं। हेलो
1: हेलो।
0: जी, आप रेडियो डॉक्टर में हैं? जितेंद्र जी।
1: हाँ
0: जी बताएं।
1: जितेंद्र जयपुर से।
0: हाँ जी जितेंद्र जी, अपना प्रश्न करें।
1: जैसे हमारा प्रश्न, मेरी उम्र 52-53 साल है, लेकिन जैसे नींद की हमारी कमी है और मन सेंट्रल टाइप का रहता है, ये भी कर ले वो भी कर ले, रेनबो भी सुन ले, एफएम गोल्ड भी सुन ले, ऐसे करके कितना देर सभी पे अच्छा आता रहता है, सबके अच्छा आता रहता है।
0: हाँ, तो आपको अच्छा लगता है ना सुन के?
1: हाँ हाँ, तो मतलब इसमें पजल भी रहता है माइंड, मतलब ये भी होता है की क्या क्या करें,
0: क्या क्या क्या देखें, क्या क्या छोड़ें,
1: क्या क्या, सारे अच्छा है ना,
0: सारे अच्छा है। चलिए,
1: प्रसार भारती का सारा ही चीज अच्छा है।
0: अरे वाह, क्या बात है, ये तो हमारी एक तरह से तारीफ कर दी आपने।
1: हाँ, तो इस तरह नींद की थोड़ा सा प्रॉब्लम है, हालांकि मैं एक्सरसाइज करता हूँ कुछ, मतलब ऑफिसली कुछ ऐसे भी थोड़ा सा हल्का सा मन प्रॉब्लम रहता है जैसे, तो कैसे ठीक रखूँ अपने आप को? जैसे ये
0: जी,
1: मेरे मैं जयपुर में रहता हूँ, मैं पहले कलकत्ता रहता था, तो दोस्त लोग थे,
0: तो यहाँ दोस्त लोग नहीं है,
1: रहते, हाँ, नहीं है।
0: मैडम आपसे कुछ पूछना चाहेंगी तो आप लाइन पे रहिए।
2: नींद में क्या दिक्कत आती है जितेंद्र जी?
1: मतलब जैसे 3-4 घंटे के बाद फिर नींद खुल जाती है।
2: अच्छा।
1: तो फिर 1-2 घंटा काम करते फिर सोते हैं।
2: अच्छा।
1: और दोपहर में भी सोने की इच्छा करती है, लेकिन ऑफिस में रहते हैं तो इसलिए ठीक से नहीं, मतलब नींद का ज्यादातर प्रॉब्लम है।
2: तो 3-4 घंटे बाद जब नींद खुल जाती है, तो उसके बाद कितनी देर बाद नींद आती है?
1: करीब 1.5-2 घंटे बाद।
2: और उस 1.5-2 घंटे में आप क्या करते हैं?
1: कुछ घर का काम कर लेते हैं, फिर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं।
2: अच्छा, ठीक है।
1: अच्छा, और दूसरा चीज है कि जैसे कहीं घूमने की प्लानिंग हो रहा है, तो चित्तौड़गढ़ जाएं कि मथुरा जाएं, सब पास पास, तो इसी कंफ्यूजन में कहीं नहीं जा पाते।
2: राइट, तो ये तो हम कहते रहे, वो जब बहुत सारी चॉइसेस होती हैं तो हम सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें कि क्या नहीं करें। बट एक देखिए, दो चीजें जो आप जहाँ पे आप कह रहे हैं कि क्या करें क्या नहीं करें चंचल, ये चीजें हो सकती हैं, उसमें बेस्ट ये है कि एक लिस्ट बना लीजिए। जैसे मैं हमेशा करती हूँ, लिस्ट बना लेती हूँ क्या क्या करना है, उसमें से सबसे जरूरी क्या है या सबसे अच्छा क्या है या सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है या कौन सी चीज ज्यादा इजीली हो सकती है। जैसे आपने कहा 2 जगहों के नाम लिए आपने कहा, तो जहां पे ज्यादा इजीली जा सकते हैं वहां पे पहले हो आइए, अगला वाला अगले बारे के लिए लिख लीजिए। सो उस तरह से एक लिस्ट बना लीजिए। वही अगर आपको प्रोग्राम सुनने हैं तो उनकी लिस्ट बना ली कि अच्छा आज ये वाला सुन लूंगा, कल ये वाला सुन लूंगा, ताकि हर चीज को बैलेंस कर पाए।
0: रेडियो डॉक्टर रोज सुनना है लेकिन जितेंद्र जी,
2: क्योंकि चीजों को बैलेंस नहीं कर पाएंगे तो हमेशा कंफ्यूज रहेंगे, दिमाग में चलता रहेगा अरे ये छूट गया वो कर लिया लेकिन वो वाली चीज तो नहीं हुई, उन सब से भी नींद की दिक्कत हो सकती है। दूसरा, जैसे आपने कहा कि थोड़ा सा मन में परेशानी वगैरह चल रही है, तो अगर जो दोस्त यहाँ नहीं है तो क्या ऐसे कोई फैमिली मेंबर्स या दोस्त ऐसे हैं जिनसे आप थोड़ा रेगुलरली कम से कम फोन पे बात कर सकते हैं? सो वो चीज
1: है, और एक यहाँ पे नहीं है लेकिन दूसरे जगह है।
2: अच्छा, नहीं जैसे फोन पे बात कर लिया थोड़ा,
1: कर सकते हैं
2: ना, थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह सुबह करते हैं?
1: नहीं, शाम को करते हैं, 6:30-6 बजे शाम।
2: उसको कोशिश करिए सुबह कर लीजिए या शाम को थोड़ा और जल्दी कर लीजिए। और रात को जब नींद खुलती है तो घर के काम मत करिए उस समय अपना, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ लिया लेकिन बेड पे बैठ के मत पढ़िए उसको, कहीं कुर्सी पे या नीचे जमीन पे कहीं भी बैठ के पढ़िए, और फिर नींद आने लगे तो वापस सोने चले जाइए। या फिर जैसे योग निद्रा होती है या रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस वगैरह तो आजकल बहुत मिल जाती हैं, वो सब सुन लीजिए और लाइट वगैरह बंद रखिए। बहुत ज्यादा घर के काम करने लगेंगे तो दिमाग फिर से एक्टिव हो जाएगा। सो दिमाग को रिलैक्स रखना है, फोन का ये नहीं कि फोन को देखते रहे या टीवी को देखते रहे, लेकिन कुछ रिलैक्सिंग सुन लिया या सिर्फ पढ़ लिया बैठ के।
0: धन्यवाद प्रश्न करने के लिए, हम आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। बहुत सारे मैसेज भी हमारे पास आ चुके हैं, धन्यवाद जितेंद्र जी। ये मैसेज हमें लिखकर भेजा है नरदेव सिंह चौहान ने कोटद्वार उत्तराखंड से। शालिनी मैम एंड डॉक्टर स्वाति मैम को नमस्कार। मैम, डॉक्टर साहिबा से एक मानसिक रोगी के केयर टेकर, जैसे उनके पुत्र या पति या बहू, वो क्या एडवाइस आप देना चाहेंगी? ये चाहते हैं कि आप उनको एडवाइस दें, क्योंकि इन्होंने देखा है कि कई बार ऐसा होता है कि वो प्रॉपर ट्रीटमेंट जो हमारे बुजुर्ग चाहते हैं वो को नहीं मिल पाता है अपने बहू से, चाहे बेटे से, चाहे पति से, वट एवर दे एक्सपेक्ट, तो उससे स्थितियां और बद से बदतर होती जाती हैं। तो आपका केयर टेकर्स के लिए क्या एडवाइस रहेगा?
2: बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि कई बार हम मरीजों को देखते देखते उन लोगों को भूल जाते हैं जो मरीजों की देखभाल कर रहे हैं।
0: सो
2: उसमें हम लोग कहते हैं कि एक तो परफेक्ट कभी भी आप नहीं हो पाएंगे, कभी भी ये नहीं हो पाएगा कि सामने वाला पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो। वो अपने आप में परेशान है तो उसको किसी ना किसी चीज में परेशानी दिख जाएगी। सो जैसे मैंने कहा, हर चीज को अपने ऊपर नहीं लेना है कि ये मेरी कंप्लेन कर रहे हैं या मुझसे झगड़ा कर रहे हैं, वो नहीं करना है। अपनी सेल्फ केयर बहुत इम्पॉर्टेंट है।

0: तो जैसे हम बोलते हैं कि आप थोड़ी देर आप एक्सरसाइज ज़रूर करिए, अपने रिलैक्सेशन के लिए या इन्जॉयमेंट के लिए थोड़ा सा समय निकालिए, और उसके लिए ज़रूरी है कि सारी फैमिली कोऑपरेट करे, अगर सब लोग साथ में रह रहे हैं तो थोड़ा समय बेटे को भी मिल गया जहाँ पे वो अपना काम कर रहा है या अपने इन्जॉयमेंट के लिए कुछ कर रहा है, फिर थोड़ा सा फादर का ध्यान रख लिया, वैसे ही बहू ने करा, वैसे ही वाइफ ने किया, या अगर वाइफ है तो हस्बैंड ने किया, तो एक सपोर्ट सिस्टम आपका रहेगा तो सबकी थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी भी रहेगी और सबको थोड़ा थोड़ा टाइम आउट भी मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि नहीं, चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही हैं, हम लोग आपस में मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने घर के आसपास या एरिया में किसी साइकोलॉजिस्ट से भी बात कर सकते हैं, जो एज अ फैमिली आपसे बात करके चीज़ों को समझ सके, आपको समझा सके कि आपको चीज़ों को कैसे मैनेज करना है।
1: जी जी, और लगभग ऐसा ही एक और मैसेज हमारे पास आया है डॉक्टर, हाउ टू गेट डीप कंटिन्यूस एंड रेस्टफुल स्लीप, जो अभी हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले राजेंद्र जी के साथ, तो आपने थोड़ा सा तो बताया, तो इनको कुछ और कहना चाहेंगे आप?
0: सो स्लीप के लिए ना हमारा एक मेथड होता है जिसको कहते हैं स्लीप हाइजीन। सो उसके कुछ रूल्स होते हैं, मैं वो बता देती हूँ, शायद अगर उससे मदद मिले
1: जी,
0: तो
1: बिल्कुल।
0: पहला रूल होता है कि सोने का जाने का समय और बेड छोड़ने का समय एक होना चाहिए। कि अगर आप 10-10:30 बजे सोने जा रहे हैं तो 10 से 11 के बीच में सोने चले जाइए। सुबह अगर 7 बजे उठ रहे हैं तो चाहे नींद आई है या नहीं आई है, 7 बजे बिस्तर को छोड़ दीजिए। दूसरी चीज, अगर आधे घंटे तक नींद नहीं आती है तो बिस्तर पर लेटे नहीं रहना है, उठ जाइए, कोई किताब पढ़ लीजिए, कोई प्लेलिस्ट बना लीजिए जिसमें स्लीप स्टोरी, स्लीप म्यूजिक या योग निद्रा या मेडिटेशन टाइप की चीजें हों जिनको आप सिर्फ सुन सकें। टीवी मोबाइल वगैरह का उपयोग नहीं करना है, बल्कि सोने जाने से आधा घंटा पहले ही वो चीजें बंद कर दीजिए। एक्सरसाइज प्रेफरेबली मॉर्निंग टाइम में, अगर स्लीप के इश्यूज हो रहे हैं तो। शाम को 5-6 बजे के बाद चाय नहीं पीनी है, सिगरेट अगर आप स्मोक करते हैं या टोबैको लेते हैं तो वो सब नहीं लेना है, अल्कोहल अवॉइड करनी है, कैफीन अवॉइड करना है। रात को गर्म दूध पी के सो सकते हैं या गर्म पानी से थोड़ा नहा के सो सकते हैं, उससे माइंड कूल डाउन होता है। एक तरीका जो मेरे लिए बहुत काम करता है, आप सोचेंगे कि ये क्या तरीका है, बट मुझे अगर नींद नहीं आई तो मैं हनुमान चालीसा करना शुरू कर देती हूँ। मेन पर्पस ये है कि आपका जो उस समय जब नींद नहीं आती, हम बहुत सारा नेगेटिव सोच रहे होते हैं, क्यों नहीं आ रही, कब आएगी, और जितना नींद
1: कुछ
0: के,
1: कुछ और नेगेटिव थॉट्स
0: या
1: आने
0: और
1: लग
0: कोई
1: जाते
0: नेगेटिव
1: हैं आपके,
0: आ रहे हैं, तो हम कहते हैं जितना नींद के पीछे भागेंगे उतना नींद आपसे दूर भागेगी। तो आप चाहे कोई मंत्र पढ़ लीजिए या बैकवर्ड काउंटिंग कर लीजिए, तो उन सबसे क्या होता है, उन नेगेटिव थॉट से आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, तो अगेन माइंड रिलैक्स होगा, नींद आने लगेगी। सो ये कुछ तरीके हम बताते हैं स्लीप से।
1: हमारे साथ हमारे रेगुलर जो श्रोता हैं चट्टा जी, वो भी कॉल पे आ गए हैं, तो इनसे पूछ लेते हैं। हेलो
2: हेलो, नमस्ते मैडम
1: जी। नमस्ते नमस्ते,
2: रघुविंदर सिंह चट्टा बोल रहा हूँ
1: जी। आप अपना प्रश्न करें।
2: डॉक्टर साहब को सादर प्रणाम।
0: नमस्ते जी
2: डॉक्टर साहब। वैसे तो मैं बड़ा कूल माइंडेड पर्सन हूँ
0: जी,
2: और 37 साल गवर्नमेंट जॉब की एज ए ऑफिसर, और रेगुलर लिस्टनर भी हूँ आकाशवाणी का 45 ईयर्स से। लेकिन मेरे को एक दिक्कत ये होती है कि मैं कई बार छोटी सी बात पर एकदम से आग बबूला हो जाता हूँ, फिर मेरे से ना तो कोई काम होता है और ना मैं रात को सो पाता हूँ, बार बार नींद खुल जाती है। जैसे किसी, मैं जा रहा हूँ और सामने से कोई जानकर आ रहा है, उसने मुझे इग्नोर कर दिया या मैंने मैसेज किया प्रोग्राम में वो शामिल नहीं हुआ, तो मेरे को तो फिर मेरा माइंड जो है ना वो अपसेट हो जाता है। तो
1: चाचा जी, कोई मैसेज नहीं शामिल हुआ इस पे, आप आग बबूला मत हुआ करिए, यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न आते हैं।
2: नहीं वो बात नहीं, मैं तो अपनी बात बता रहा
1: हूँ। आपकी बात मैं कर रही हूँ, क्योंकि आप हमारे सभी कार्यक्रमों में भी मैसेज करते हैं हम जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर में शामिल हो। तो हमने सुन लिया डॉक्टर, क्या बताना चाहेंगे इनको?
0: तो चड्ढा जी नमस्ते, नमस्कार। तो इसको हम कहते हैं कि एकदम से आग बबूला, मतलब ऐसा लगना कि कहीं ना कहीं दिमाग में शायद ये सोच चलती है कि मेरे साथ गलत हुआ है, या मेरे साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है, या सामने वाले को तमीज से रहना चाहिए, या लोगों को बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, जो भी एक दिमाग में चल सकता है। तो जब हम ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे अटक जाते हैं ना कि मेरे साथ ही बुरा हो रहा है, या सामने वाले को हमेशा चीज़ों को ठीक से करना चाहिए, तो वहाँ पर हमें फिर जल्दी गुस्सा आ जाता है, हमें लगता है कि हमारे साथ गलत कैसे हो सकता है। उसके लिए जो एक सिंपल हम लोग टेक्निक कहते हैं, टाइम आउट। आप जब गुस्सा आ रहा है, एक तो उस परिस्थिति से बाहर आ जाइए, थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग करा। अगर फिर भी बहुत गुस्सा आ रहा है तो हम कहते हैं अपनी मुट्ठी को कस के बंद कर लीजिए, जैसे सारा गुस्सा उसमें भर दिया है, और उसको धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए मुट्ठी को छोड़िए। ऐसे करके 5 मिनट तक थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, उस सिचुएशन से हटेंगे, और फिर

0: सोचना है कि क्या मेरा गुस्सा जायज है, क्या सामने वाले ने अगर मुझे इग्नोर किया या मैसेज शामिल नहीं हुआ तो क्या उसका कोई और कारण भी हो सकता है। सो इस तरह से जब अपने आप को पॉजिटिवली समझाएंगे या अपनी सोच को क्वेश्चन खुद करेंगे कि मैं ऐसा किस वजह से सोच रहा हूँ, क्या मेरा सोचना सही है, क्या इसको देखने का और कोई तरीका है, या मैं किसी और किसी बच्चे को अगर वो इस परिस्थिति में होता तो उसको क्या समझाता कि तुम्हें क्या सोचना चाहिए या क्या करना चाहिए, उससे आपको थोड़ा सा आराम मिलेगा। बट सबसे जरूरी है आपको एकदम से जो गुस्सा आया है उसको शांत करना। उसके लिए बेस्ट होता है थोड़ा ठंडा पानी पी लीजिए, मुंह पे ठंडे पानी से थोड़ा छींटा दे दीजिए और ब्रीदिंग एक्सरसाइज, क्योंकि आप ब्रीद करेंगे तो आपका इन जनरल बॉडी टेम्परेचर माइंड सब काम डाउन होगा।
1: जी थैंक यू मैडम, जय हिंद।
0: जी
2: थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। और ये जो आपने प्रश्न पूछा है मुझे लगता है बहुत सारे श्रोताओं के मन में भी हो सकता है, तो उनको भी जवाब मिल गया। यहाँ पर एक फिर म्यूजिकल ब्रेक लेंगे, गाना सुनेंगे और वापस आएंगे और जो मैसेजेस हमारे पास आए हैं उनको भी शामिल करेंगे। आप सुन रहे हैं रेडियो डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति केडिया गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर क्लिनिकल साइकोलॉजी एम्स न्यू दिल्ली हमारे साथ हैं। बात हो रही है मेंटल हेल्थ ऑफ एल्डरली की, तो आप इसी तरह से जुड़े रहिए रेनबो के साथ और सुनते रहिए रेडियो डॉक्टर।

0: इसकी जरूरत, इसको कैसे पहचाने और कितना इम्पोर्टेंट होता है मेंटली हेल्दी रहना। सुखपाल जी हमारे साथ कॉल पर हैं, इनसे बात कर लेते हैं। हेलो,
1: नमस्ते मैम।
0: जी जी नमस्ते सुखपाल जी।
1: डॉक्टर साहिबा को नमस्ते
0: जी। आप क्या प्रश्न करना चाहेंगे?
1: मैम मैं जानना चाहता हूँ डॉक्टर साहिबा से, मेरी उम्र तो 75 वर्ष है सर, तो ये 75 वर्ष के बाद जो है ये बुजुर्गो में चिड़चिड़ापन क्यों आ जाता है?
2: चिड़चिड़ापन
0: की बात कर रहे हैं
1: जी।
2: तो सुखपाल जी नमस्कार। चिड़चिड़ापन बेसिकली इसलिए आ जाता है क्योंकि शायद उस इंसान को, उस बुजुर्ग को लगता है कि उसने जिंदगी में या तो बहुत कुछ करा लेकिन उसको उसका फल नहीं मिला, या जिंदगी में वो ठीक से अपने जो चाहता था वो नहीं कर पाया दूसरों की वजह से, या कई लोग जो दूसरों के ऊपर निर्भर हो जाते हैं चाहे फाइनेंशियली या फिजिकली, उस चीज में भी चिड़चिड़ापन आ सकता है। या आपके पास रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ करने को नहीं है, आपको नहीं पता कि कैसे अपना दिन गुजारूं, उस केस में भी चिड़चिड़ापन हो सकता है। तो डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं चिड़चिड़ापन के। बस ये देखने की जरूरत है कि अगर चिड़चिड़ापन कंटिन्यू हो रहा है, वो चीज निकल नहीं रही है और उसकी वजह से बाकी दिक्कतें भी आने लगी हैं, जैसे आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होने लगी है, फैमिली के साथ नहीं बन रही है, या इन उसकी वजह से नींद में भूख में भी चेंज आ गया है, तो आपको डॉक्टर से मिलने की जरूरत है ताकि वो ढंग से डायग्नोस कर सकें कि और कुछ डिप्रेशन टाइप की बीमारी तो नहीं हो रही है और उसका इलाज कर सकें
0: जी। और मैसेजेस हमारे पास हैं। सोहन जी ने लिखा है देहरादून से कि मेरी मदर की उम्र 81 इयर्स है और अचानक पता नहीं क्या हुआ बड़बड़ाने लगी, किसी को पहचान नहीं रही है, उनका बीपी भी उन्होंने बताया है 158/78 है और कुछ खा भी नहीं रही है, तो क्या हो सकता है ये जानना चाहते हैं।
2: इस केस में यूजुअली इस एज में जब अचानक से कोई चीज हो तो एक बीमारी होती है जिसको डिलीरियम कहते हैं, जिसमें अचानक से इंसान चीजों को भूलने लगेगा, अपने जान आसपास पहलों को नहीं पहचानेगा, या फिर उसको नहीं पता कि अभी क्या समय हुआ है, कहाँ पे वो रह रहा है या कहाँ पे बैठा है, और बड़बड़ाना, ये सब चीजें हो सकती हैं। कई बार ये चीजें स्ट्रोक में भी हो सकती हैं। तो बेटर रहेगा कि आप जहां भी रहते हैं आसपास किसी साइकेट्रिस्ट या न्यूरोलॉजिस्ट से मिल लें ताकि वो प्रॉपर ब्रेन स्कैन वगैरह करके देख सकें कि कोई और दिक्कत तो नहीं है।
0: अच्छा, और ये हमें लिखकर भेजा है, लिखने वाले ने नाम तो नहीं लिखा है पर लिखा है, नमस्कार टू डियरेस्ट दोस्त शालिनी जी एंड डॉक्टर साहिबा, थैंक्स फॉर अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। माय क्वेश्चन इज, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ रेगुलर ब्लड टेस्ट एंड अदर स्कैन्स नीडेड बट दीज आर नॉट डन टाइमली विच कैन अफेक्ट मेंटली। तो बहुत जरूरी है क्योंकि टेस्ट भी होने चाहिए, फिजिकल हेल्थ भी उतनी इंपॉर्टेंट है, ये हम हमेशा कह ही रहे हैं। तो इन्होंने ये लिखा है कि कभी कभी विटामिन डी या B12 या अदर इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी से भी मेंटल हेल्थ बिगड़ सकती है, तो कितना रेगुलरली करना चाहिए, हाउ फ्रीक्वेंटली?
2: बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेंटल हेल्थ डायरेक्टली तो इनकी वजह से नहीं बिगड़ेगी, बट हाँ ये फिजिकल हेल्थ इश्यूज कॉज कर सकते हैं जिसकी वजह से मेंटल हेल्थ पे फर्क पड़ सकता है। सो बेटर रहता है कि कम से कम एक ईयरली अपना जांच करवा लीजिए, जिसमें बेसिक जो आपके ब्लड टेस्ट हैं या अल्ट्रासाउंड है, एक्सरेज हैं, ये एक बेसिक करवा लें तो बहुत अच्छा रहेगा। और अगर उसके बीच में लगता है कि कोई दिक्कत होने लगी है तो आप थोड़ा सा उसको पहले भी करवा सकते हैं
0: जी। ललित भाटिया हमको लिख रहे हैं, 65 साल के हैं, अहमदाबाद से। नमस्कार डॉक्टर मैडम और एंकर, आज का विषय धन्यवाद का पात्र है और मैडम का बताने का तरीका, वर्णन करने का तरीका बहुत अच्छा है, आपकी तारीफ कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि हमें तो सिर्फ रेडियो सुनना ही हमारी हर तकलीफ का इलाज है, तो इतना ही लिखा है उन्होंने, कोई प्रश्न नहीं किया है जी, और आपकी तारीफ की है। और ये हमें लिखा है मनोहर लाल गांधी जी ने चाणक्य चौक गाजियाबाद से, कि बहुत से बुजुर्ग अकेले रहते हैं, ऐसा बहुत आमतौर पर आजकल देखा जा रहा है, और उनसे कोई बात करने वाला भी नहीं होता है, वो अक्सर खोए खोए रहते हैं, उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता है, माइंड फ्रेश नहीं रहता है। तो ऐसे बुजुर्ग किस तरह से अपने दिमाग को ऑक्यूपाइड रखें, फ्रेश रखें, बिकॉज ये भी एक काफी प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम है,
2: बहुत मेजर प्रॉब्लम हो गई है स्पेशली अर्बन सिटीज में जहाँ पे अकेलापन बहुत ज्यादा हो गया है लोगों में। तो उसमें हम कहते हैं कि देखिए अपने लेवल पे जो आप इमीडिएटली कर सकते हैं वो है अपना रूटीन बनाना। कई बार क्या होता है जब बहुत अकेलापन है, कोई है नहीं, तो लगता है क्यों सुबह उठना है, क्यों नहाना धोना है, क्यों कुछ भी काम करना है, बट एक रूटीन अगर आप बना पाएंगे तो उससे आप फिजिकली मेंटली बेटर रहेंगे। दूसरा, आसपास अगर आपका कोई कम्युनिटी सेंटर है, कोई एनजीओ है जहाँ पे आप जा सकते हैं, या मंदिर अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो मंदिर में चले गए या गुरुद्वारे में चले गए जहाँ पे लोगों की थोड़ी हेल्प करवा दी या कर दी, वो उसमें मदद मिल सकती है। कई एनजीओज होते हैं जो ओल्ड एज के लिए स्पेशली काम करते हैं, तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। कभी कभी हम

0: ऑर्फनेजेस वगैरह में भी आप जाके वॉलंटियर कर सकते हैं, तो छोटे बच्चे होंगे उनके साथ जब घुलेंगे मिलेंगे, उनकी बातें सुनेंगे खेलेंगे, तो वहां पे भी माइंड फ्रेश हो सकता है,
1: अकेलापन दूर हो सकता है,
0: अकेलापन दूर हो सकता है। या अगर आपको लगता है कि आप कोई इस उम्र में कोई क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, या कोई चीज जो आपने सोची थी कि मैं करूंगा लेकिन जिम्मेदारियों की वजह से नहीं कर पाए, तो इस तरह का कोई नई चीज भी आप सीख सकते हैं। अगर पढ़े लिखे हैं तो थोड़ा बच्चों को चाहे फ्री में ट्यूशन पढ़ा दिया गरीब बच्चों को, सो जितना एक्टिव अपने आप को रख पाएंगे, अपने खुद को थोड़ा पुश जरूर करना पड़ेगा बट एक्टिव रखेंगे तो अच्छा रहेगा। योगा क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए ताकि वहां पे और चार लोग मिल जाएं आपको, उससे मदद मिल सकती है।
1: और ये हमें लिखकर भेजा है मोहम्मद इब्राहिम जी ने कि कई बार ये देखने में आता है कि कुछ एल्डरली जो होते हैं वो एज के साथ ओवर स्वीट हो जाते हैं या कुछ इरिटेबल हो जाते हैं, तो इसका कुछ खास कारण होता है, क्यों हो जाता है ऐसा?
0: देखिए वो तो सबका एक तो अपना नेचर भी है कि इंसान इन जनरल कैसा है, फिर उसके सर्कमस्टांसेस कैसे रहे हैं। एक थ्योरी है जो कहती है कि अगर बुढ़ापे में आके आपको लगा कि आपने अपनी जिंदगी अभी तक अच्छे से जी ली है, जो चाहते थे वो काम कर लिए, बच्चे बड़े हो गए हैं, ठीक से सेटल्ड हो गए हैं, तो आप खुद में बड़ा कंटेंट फील करेंगे कि हाँ मैंने कर लिया, और आपको पता है कि फ्यूचर को लेके बहुत चिंता नहीं है। लेकिन अगर ये सब चीजें नहीं हुई हैं, आप जनरली परेशान रहे हैं लाइफ में, या फिजिकल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हो रही हैं, या फैमिली मेंबर्स किसी भी चीज में कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, तो उसमें चिड़चिड़ापन भी हो सकता है। तो ये तो सबकी अपनी
1: सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये एक जो मैसेज है, इससे ही हम कार्यक्रम को यहाँ पर मैसेजेस का सिलसिला खत्म करेंगे। गोविंद बंसोड़े जी लिख रहे हैं लातूर महाराष्ट्र से, नमस्कार। और बहुत अच्छी बात इन्होंने लिखी है कि बूंद बूंद से ही सागर बनता है, ये बात रेडियो डॉक्टर में डॉक्टर राहुल खरे साहब ने कही थी, और इसी बात को हम रोज सुबह व्यायाम करते समय दोहराते हैं जिससे हमारा हौसला और बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं रेडियो डॉक्टर इनकी जिंदगी में इनको मदद कर रहा है, रेडियो डॉक्टर के कारण हमारे स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, बहुत बड़ा सुधार हुआ है, और हम रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता को और डॉक्टर साहब को धन्यवाद देना चाहेंगे, नमस्कार कहना चाहेंगे। तो हमारी तरफ से भी गोविंद जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं, और साथ ही साथ आपने इतने अच्छे शब्द हमारे कार्यक्रम के बारे में कहे। और अब इस कार्यक्रम को खत्म करें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। मैं जरूर चाहूंगी कि कार्यक्रम को समाप्त करें उससे पहले कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बात आप चाहें हमारे उन श्रोताओं के लिए भी जो देर से जुड़े, कहीं ना कहीं आपकी बातों को पूरा नहीं सुन पाए। तो जो आज का हमारा विषय है मेंटल हेल्थ ऑफ एल्डरली, तो इसमें हम क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप कहना चाहेंगी?
0: दो तीन चीजें कहूंगी शालिनी जी कि एक तो हर बूढ़ा इंसान बीमार ही होगा, वो जरूरी नहीं है। कुछ ऐसे भी बूढ़े लोग हैं जो एक्चुअली बहुत हेल्दी हैं। अब उसके लिए जो जरूरी है वो है एक तो शुरू से अपना ख्याल रखना, जितना जल्दी आप शुरू कर पाएंगे उतना आपकी एजिंग बेटर होगी। तो अपने लाइफस्टाइल का ध्यान रखना, खाने पीने का, एक्सरसाइज का, अपने आप को मेंटली इंगेज रखना, बीमारियों से बचने की कोशिश करना, या अगर बीमारियां हो गई हैं तो उनका जल्दी इलाज करवा लेना। सो ये चीज बहुत जरूरी है। दूसरा ये है कि जिस तरह से शारीरिक परेशानियां किसी को भी हो सकती हैं, उस तरह से मानसिक परेशानियां भी किसी को भी हो सकती हैं, लेकिन अगर सही समय पे हम उनका इलाज करवा लें, जैसे डिप्रेशन है, एंजाइटी है, इन सब के लिए दवाइयां भी उपलब्ध हैं बहुत अच्छी, और साथ में काउंसलिंग भी होती है, अगर हम समय से इलाज करा लें तो जो बचे हुए दिन हैं, जो बाकी जिंदगी है, वो बहुत अच्छे से निकल सकती है। और तीसरी चीज, एक बुजुर्ग का भी परिवार की तरफ एक ये जिम्मेदारी, जैसे एक श्रोता ने कहा था कि आप अच्छे से बात कीजिए, बहुत ज्यादा टोका टाकी मत कीजिए, तो उनका भी एक फर्ज है, और साथ ही साथ परिवार का भी एक फर्ज है कि वो अपने बूढ़े माँ बाप का ध्यान रखें, या हस्बैंड वाइफ एक दूसरे का ध्यान रखें, क्योंकि अल्टीमेटली तो रिश्ते ही हैं जो हमें इंसान बनाते हैं।
1: जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात, रिश्ते ही हैं जो हमें इंसान बनाते हैं। और बिल्कुल, आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है? जैसा गोविंद जी ने लिखा, आप भी अगर कुछ लिखना चाहते हैं, हमारे कार्यक्रमों के बारे में हमें बताना चाहते हैं, कुछ अच्छा नहीं लगता है उसमें, आप कुछ बदलाव चाहते हैं, तो बिल्कुल हमें लिख सकते हैं healthairdaily@gmail.com पर। और आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा ये भी आप बता सकते हैं। तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर स्वाति केटिया गुप्ता को कि आप यहाँ आई, इस विषय पर इतनी जानकारी आपने श्रोताओं को दी, उनकी समस्याओं का समाधान किया। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी में एम्स न्यू दिल्ली में। तो डॉक्टर साहब, यहाँ आने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: और स्वीकार करिए अपनी दोस्त शालिनी मित्तल का भी नमस्कार।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

0: फिर सौखी पूछ लेने हैं, नीली रील पीली रील?
1: हेलो,
0: नीली रील पीली रील?
1: लिली
0: नीली रील पीली रील?
1: रील पीली रील,
0: हाँ
1: लिली रील पीली रील, लिली रील पीली रील।
0: पांजरी बोलना।
1: हाँ जी, हाँ जी, लिली रील पीली रील, लिली रील पीली रील, लिली रील पीली रील, लिली रील पीली रील, लिली रील पीली रील।
0: क्या बात है यार, क्या
1: हाँ
0: बात है। ये तो वह ना साड़ी जड़ी पुरातन कह सकते हैं आपां, जड़ी साड़ी विरासत है। ये विरासत दियां
1: जी,
0: जड़ियां चीज़ां ना, ये साड़े माइंड नूं हमेशा दुरुस्त रखदियां। वैसे तो आपां एक्सरसाइज करते हैं रोज़ ही शरीर दी, पर अहीं कितना ना माइंड दी एक्सरसाइज करनी भुल गए। और वाकई असीं जोरदार ताड़ियां मारदे हां जी, तुसीं नीली रील पीली रील पांजरी पूरा कीता, ते असीं खुश हो के तुहानूं फिर गाणा सुना दईए कुलदीप माणक साहब दा।
1: एक गल हैगी भाजी, तुहाडे नाल गल करके मजा आ जांदा भाजी।
0: हाय सही है,
1: हाँ जी, हाँ
0: सही
1: जी,
0: है। वैसे ना
1: आपां
0: एक मैं तुहाडे नाल गलबात करदा, मैनूं बड़ा स्वाद आण डिआ। ये
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: जिन्ने अज कल आपां नवीं नवीं चीज़ां लैन लग पए हैं ना, अहीं कितें ना कितें जिहड़े साडे वर्कर्स ने, जिहड़े साडे कारीगर आ, असीं उहनां नूं कितें
1: हाँ
0: ना
1: जी, हाँ
0: कितें
1: जी,
0: भुलदे नहीं जा रहे।
1: हाँ जी, हाँ जी। ओ भाजी, आपां कम करी ना शटर कोक दा, ओ साडे कोल वी इक कारीगर नी, कारीगर का लगे दा साडे कोल, ओनू
0: अच्छा
1: बड़ा मजाक करी दा भाजी आपां।
0: सही है जी, सही है।
1: हाँ
0: ते ये तुहाडे की विचार ने, असीं इन्ना कुछ क्यों भुलदे जा रहे हैं, भी कारीगरां नूं क्यों भुलदे जा रहे हैं, भी अहीं नवीं नवीं
1: भाजी,
0: चीज़ां लैंदे हां, पुरानियां असीं रिपेयर ही नहीं करवाउंदे।
1: हाँ जी, हाँ जी, पता की चक्कर हैगा भाजी, अजकल जमाना चल गया दूजा, मशीनरी, लोगों मशीना यकीन करन लगे, कारीगर ने करते नी भाजी। हाँ, बनिया बनाइया चीजा लैंदे आ कारीगर, बेचारे पिछे हटी जाते फिर।
0: बिल्कुल बिल्कुल। वैसे ये पिछे ना, पिछे जे एक नवी न्यूज़ भी आई सी, भी लोगों ने ना बहुतात गिणती दे विच पिछले साल बहुत वड्डे लेवल दे उत्ते रिपेयर कराइया अपनी चीज़ां, टीवी वी जिहड़े अपने होम थिएटर स्पीकर्स, ते उहदे नाल अपने देश नूं बहुत ज़्यादा फायदा होया, क्योंकि लोगों ने नवीं चीज़ां खरीदिया नहीं, उन्होंने पुरानिया चीज़ां नूं रिपेयर करवाया। एक तो देश की संपत्ति जिहड़ी बची है ना, कारीगरां नूं फायदा होया, और सब तो वड्डी चीज़ ग्लोबल वार्मिंग दे विच जिहड़ा सब तो वड्डा कारण मन्निया जांदा प्लास्टिक, उहदा जिहड़ा डिसमेंटल ओह घट होया। ते मतलब बहुत ही बेनिफिट ने जदों आपां कोई भी चीज़ नूं, खराब चीज़ नूं रिपेयर कराने, और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हैगी जिहड़ी रिपेयर ना हो पाए। सो ये
1: हाँ जी,
0: बड़ी
1: हाँ जी,
0: वड्डी शलांघा वाली गल आ कि साडे भारत देश दे लोकां ने पिछले साल बहुत सारियां हज़ारां नहीं करोड़ां करोड़ां दी गिणती दे विच चीज़ां नूं रिपेयर करवाया, ते अपने देश दा पैसा देश च ही रहा। और नवीं नवीं चीज़ां वाल असीं जिहड़ा अहीं भजदे हाँ, उन्हां तों असीं गुरेज़ करिए, क्योंकि भारत देश एक ऐसा देश है जिथे कि सब तो ज़्यादा रिपेयर हुंदी है। ते लो जी, तुहाडी फरमाइश ते ज़्यादा गल्लां नहीं करांगे, आपां सिद्धा ही गाना सुनावांगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बड़ा मज़ा आया तुहाडे नाल गलबात करके।
1: थैंक यू
0: तुहाडा
1: भाई,
0: नाम
1: थैंक
0: की
1: यू,
0: है?
1: रिंकू भगत भाजी।
0: रिंकू भाजी, तुहाडे नाल बड़ा मज़ा आया गलबात करके। तो लो जी, माँ हुंदी है माँ दुनिया वाले, वाकई सही गल है, ते बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हो माँ हुंदी है माँ दुनिया वाले ओ, क्या उच्चा स्केल है पंजाबी, जिंदाबाद, पंजाबियों के स्केल बड़े उच्चे होंगे ने। लाओ जी।

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।

0: ओके ऑल राइट एफएम बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ से आकाशवाणी जलंधर दा रेनबो चैनल आया ते शो तुसी सुन रहे हो हैलो जलंधर जिथे असी एक दूसरे नाल हैलो हैलो कर रहे हैं ते अज दा टॉपिक जेड़ा सारे नु पता है कि काम करने वाले जेडे साडे मिस्त्री ने जेडे मकैनिक्स ने कमाल दे बंदे जेडे टुटियां चीज़ां नु जोड़न का हुनर रखते हैं और साढ़े इंडिया के सब तो ज़्यादा पाए जाते हैं सो असी गल कर रहे हैं अपने ही साथियों की अपने ही दोस्तों की तो लो जी अगले कॉलर साढ़े नाल जुड़ चुके हैं आओ असी उन्होंने नाल गलबात करते हाँ जी सत श्रीकाल जी की हाल चाल जी की नाम है जी तुहाडा वेलकम है जी तुहाडा आकाशवाणी के इस खास प्रोग्राम च हैलो जलंधर च महाराज जी की नाम है तुहाडा ढोलक वैसे बीट बॉक्सिंग कर लोगे चलो सही है ठीक है अच्छा आज दा टॉपिक जेड़ा चल रहा साडा मकैनिक्स दा चल रहा तो आड़े इलाके दा केड़ा कारीगर आ जेड़ा कहंदा हुणे पहुंचया बस मैं कहा जी हुणे पहुंचया कह के भी अद्धा घंटा दूर दूर ही रहंदा
1: हां जी
0: ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਕੈਨਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਬਸ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਮਿੰਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ 10 ਮਿੰਟ 10 ਘੰਟੇ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ
1: ਸਰ ਬਥੇਰੇ ਐਪ ਚ ਲਾਂਦੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨਾ ਕੰਮ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ
0: ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ
1: ਹੁਣੇ ਰੁਕ 10 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਆਇਆ ਘੰਟੇ ਤੱਕ
0: ਓਏ ਹੋਏ ਤੇ ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਮਕੈਨਿਕ ਨੇ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਦੱਸਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਲੈ ਲਾਂ ਚੀਜ਼ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ ਦੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਓ ਜੀ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ
1: ਅੱਜ ਕੱਲ ਛੁੱਟੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨਾ ਮੈਂ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ
0: ਅੱਛਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਤੇ ਲਓ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਤੇ ਲਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ
1: ਠੀਕ ਹੈ ਲਓ ਜੀ

नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। FM बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते आकाशवाणी जलंधर दा ए रेनबो चैनल है ते तुसी अपना प्यारा शो सुन रहे हो जिदा नाम है कट्ठे मिलके कहने आ सारयां नूं पता है तुसी इंतजार कर रहे सी नाम है जी लव यू जिंदगी। एक बारी दोबारा तो कहो यार दिलों को बड़ा मजा आएगा सारे मिलके कहने आ 3 2 1 अपने आप नूं कहो सारे जाने लव यू जिंदगी। वाकई क्योंकि ना असी जिन्ने भी आरजेज आ ना असी बोल उदों ही पाने जदों असी दिलों होइए क्योंकि ये जिहड़ी साडी ड्यूटी लगी है ना जिहड़ी साडी सेवा लगी है ये जेकर असी दिलों ना होइए ना तो असी शो ही ना कर पाईए। सो इस करके दिल दी दिल तक आवाज़ उदों ही पहुँचती है जदों वाकया ही तुसी दिलों इस शो नू करो। तो वाकई मैं दिलों बोल रहा आरजे जोरावर सिंह हमेशा दिलों बोलता है और सारे दे सारे जिन्ने भी साढ़े आरजेज ने वो दिलों ही बोलते हैं। सो अज का ये शो असी शुरू करते हैं। ये शो की खासियत की है जी आप शुरुआत करते हैं जी कहते हैं कि जलंधर दुआबा मालवा माझा तो दुनिया के हर उस कोने विच बैठे स्रोते हो जिथे साड़ी आवाज़ पहुँच रही है ना हर सवेर सूरज की एक नवी किरण नाल शुरू होती है ते हर शाम अपने नाल कुछ यादा छड़ जाती है। इस सफ़र का नाम है जिंदगी। जिंदगी कदे माँ की ममता वर्गी नरम लगती है ते कदे पिता की सिक्ख्या वर्गी मजबूत कदे दोस्तों की हासी बन के गूंजती है ते कदे किसे अपने की याद बन के अखां विच ठहर जाती है। कई बार असी दौड़ते रहने मंजिलां लई सुपनियां लई जिम्मेवारियां लई पर इस दौड़ विच असी भुल जांदे हां कि जिंदगी सिर्फ मंजिल का नाम नहीं सफर का नाम भी है। इस मुस्कुराहट एक एक चंगा शब्द एक पुराना गीत एक कप चाह जा किसे अपने दा साथ यही तो छोटिया छोटिया खुशियां ने जो जिंदगी नूं खूबसूरत बनाउंदियां ने। दोस्तों जिंदगी विच हर किसी नूं इक्को जे पत्ते नहीं वंडदी जिहड़ी जिंदगी है वो सारयां नूं इक्को जिहे पत्ते जिहड़े ने उह नहीं वंडदी पर खेडण दा हौसला हर किसी नूं दिंदी है। किसी दी जिंदगी विच खुशियां ज़्यादा हुंदियां ने ते किसी दी जिंदगी विच

सो वेलकम बैक दोस्तों, एफएम बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते आकाशवाणी जलंधर दा रेनबो चैनल है ते तुसी अपना फेवरेट शो सुन रहे हो जिहदा नाम है लव यू जिंदगी। ते लव यू जिंदगी ये कोई आम जिहा शब्द नहीं है, क्योंकि हर शब्द दे विच एक अपनी अपनी एनर्जी अपनी अपनी ताकत हुंदी है। सो दोस्तों, किसी ने बड़ा खूब लिखा है कि खुशी दी जिहड़ी परिभाषा है ना, बाहर नहीं

एक हल्की जी मुस्कान भी आ गई। अठवें दिन डॉक्टर दादी कोल गया, पैरी हाथ ला के बोलिया, दादी खुशी तां मेरे अंदर ही सी, तू बस शीशा विखा दिता। दादी ने उसके सिर ते हाथ फेरिया, पुत खुशी कोई मंजिल नहीं जो लभनी है, ये तो पेंडल आ, जिन्ना मारेगा साइकिल उन्ना चलूगा, रुक जाएगा तो डिग जाएगा। अज पिंड च डॉक्टर अर्जन का क्लीनिक सब तो वखरा है, बार बोर्ड लगा है कि मुस्कान करने वाले नूं कोई फीस नहीं, जिहड़ा मुस्कुरा के आएगा उसका इलाज फ्री किया जाएगा। तो गुलाबो दादी अज भी सवेरे शीशा देख के हसदी है, हुण पूरा पिंड उस नाल हसदा है। कहिंदे ने जिस गली चों दादी लंघ जावे उत्थे दुख दो दिन छुट्टी लै जांदा है। कहानी तो सानूं सिख्या यह मिलती है कि खुशी पैसे च नहीं, हालातों च नहीं, खुशी आदत दे विच ही है। जिवें गुरु नानक साहब कहिंदे ने, नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जिन नाम आधार। जदों शुकराना करन दी आदत पै जावे तां रब हर साह च मिल जांदा है। आर जी जोरावर सिंह कहिंदा है, खुशी वंडन नाल दुगणी, खुशी वंडन नाल दुगणी ते दुख वंडन नाल अद्धा रह जांदा है। सो वंडदे रहो मुस्कान भी प्यार भी।

0: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: मेरा एक जिद्दी गुआंढी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगा लेने, पर ओ मन्नन तैयार ही नहीं सी कि सचमुच बिल जीरो आ सकता है। मैं क्या पुत्र, नाम ही है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सब दा बिजली बिल जीरो आन लगा, फिर बोलिया हुण लगा ही दिना हां। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़न लई रजिस्टर करो PM सूर्य घर.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी है, हुण तुसीं जगजीवन सिंह तो प्रादेशिक खबरां सुनो। सब तो पहला अज दीआं खास खबरां। राष्ट्रीय नैसटिंग एजेंसी ने 21 जून में होने वाली नीट UG मुड़ प्रीख्या लिए प्रीख्या की मियाद 15 मिनट बढ़ा के 195 मिनट की। BJP की पंजाब इकाई के प्रधान केवल सिंह ढिल्लों ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के 12 सालों दौरान पंजाब को केंद्र तो बेमिसाल वित्तीय सहायता मिली है। मशहूर भारतीय शूटिंग कोच और एशियाई खेडों के सबका सोन तगमा जेतू जसपाल राणा का देहांत हो गया है, 49 साल के सन। पंजाब के सेहत मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने पटियाला दे विच पीलिया के मामलों की सूचना मिलने उपरंत किया टीम सने दौरा, कहा स्थिति काबू हेठ। पंजाब कल आए हनेरी झक्खड़ के मीह नाल कुड़ी दिन सने 2 लोगों की हुई मौत, 1 व्यक्ति गंभीर जख्मी। 14 जून तक इन्हों पंजाब के हरियाणा केंद्र शासित प्रदेशों चंडीगढ़ में बारिश और तूफान का येलो अलर्ट किया गया जारी। ते हुण खबरां विस्थार दे नाल। राष्ट्रीय टैस्टिंग एजेंसी NTA ने 21 जून में होने वाली नीट UG मुड़ प्रीख्या लिए प्रीख्या की मियाद 15 मिनट बढ़ा के 195 मिनट की है। नवा समा दोपहर बाद 2 बजे तो शाम 5:15 होएगा। सोधी हुई प्रीख्या की मियाद में लाजमी प्रीख्या अमलों की लोड़ीदा समा शामिल किया गया है। एजेंसी ने कहा कि सुधार पिछले कई सालों तो उम्मीदवारों तो प्राप्त प्रतिक्रम के आधार पर किए गए हैं। एजेंसी ने कहा है कि यह गल यकीनी बनाने वचन दे कि नीट UG प्रीख्या उम्मीदवार जरूरतों के अनुसार निरपक्ष सुरक्षित जवाबदेह ढंग कार्रवाई की जाए। सरकार ने संस्थागत सनती पार गाहकों परचून विक्रेताओं तो मीटर ईंधन हाई स्पीड डीजल खरीदन तो रोकने के लिए सरकार ने कहा है कि वह घरेलू पेट्रोल पंपों तो अपनी जरूरत पूरिया कर। पछमी एशिया में टकराव कारण आलमी सप्लाई लड़िया में विघन दरमियान स्थानक ईंधन की घाट को रोकने लिए यह फैसला किया गया है। पेट्रोलियम और कुदरती गैस मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन में कहा है कि पाबंदियां 90 दिन लागू रहनगियां, पर चून विक्रेताओं प्रति गाहक प्रतिदिन वध तो वध 200 लीटर हाई स्पीड डीजल बेचने के निर्देश दिए गए हैं। मंत्रालय ने कहा कि आदेश इस संकट दौरान जमाखोरी रोकने लिए एक अस्थाई उपाय। इसने तेल कंपनियां ते परचून विक्रेताओं को आदेश की पालना यकीनी बनाने लिए कहा है। भारतीय जनता पार्टी पंजाब प्रधान केवल सिंह ढिल्लों ने अज कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने 12 सालों दौरान सूबे नूं केंद्र तो बेमिसाल वित्तीय सहायता प्राप्त की है। उन्होंने सूबे के लोगों को कुछ राजनीतिक पार्टियों वालों फैलाए गए गुमराहकुन बयान पर विश्वास करन तो पहला तथ्यों पर विचार करने की अपील की है। मौजूदा केंद्र सरकार की सफल यात्रा से सूबे के नागरिकों की भलाई लिए पंजाब नूं ट्रांसफर किए फंडां की रकम बारे एक वीडियो राही विखावा करते हुए श्री ढिल्लों ने कहा कि कुछ राजनीतिक पार्टियां के दावों के उल्ट केंद्र ने इस समय दौरान टैक्स वंड ग्रांट इन एड GST मुआवजा से केंद्रीय कर्जा राही पंजाब नूं 4,13,000 करोड़ रुपए तो वध भेजे हैं। उन्हें भी कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल दौरान लगातार वित्त कमिश्नर अधीन केंद्रीय टैक्सों में पंजाब का हिस्सा लगातार वध्या है। श्री ढिल्लों ने अज चंडीगढ़ विखे एक मीडिया नाल गलबात करदे कहा
4: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਿਸਾਨ

नमस्कार, शाम 7 बजे थी एफएम न्यूज हेडलाइन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सिक्ख्या, सेहत संभाल, खेडा अते शासन समेत औरतां वख-वख खेतरां विच प्रमुख भूमिका निभा रहियां ने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वल्लों श्री अमरनाथ यात्रा दीआं तैयारियां दी समीक्षा, बहुपदरी सुरक्षा ग्रिड स्थापित करन दे दित्ते निर्देश। विदेश राज मंत्री डॉक्टर कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा, भारत दहशतगर्दी दे सारे रूपां दा मुकाबला करन लई मध एशियाई देशां नाल काम करन लई पूरी तरह वचनबद्ध है। राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी ने 21 जून नूं होण वाली नीट यूजी मुड़ प्रीख्या लई प्रीख्या दी म्याद 15 मिनट वधा के 195 मिनट कीती। बीजेपी पंजाब प्रधान केवल सिंह ढिल्लों ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार दे 12 सालां दौरान पंजाब नूं केंद्र तो बेमिसाल वित्तीय सहायता मिली है। प्रसिद्ध भारतीय निशानेबाजी कोच अते एशियाई खेडां विच सोने दा तमगा जीतण वाले जसपाल राणा दा देहांत। पंजाब दे सेहत अते परिवार भलाई मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने पटियाला विच पीलिया दे मामलियां दा सूचना मिलन उपरांत कीता टीम सने दौरा, कहा स्थिति काबू हेठ है। 14 जून तक इना पंजाब ते हरियाणा दे केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ विच बारिश अते तूफान दा येलो अलर्ट जारी किया गया। औरतों का ICC 2020 क्रिकेट विश्व कप आज तो शुरू हो रहा है। इसन इस घंटे दी एफएम न्यूज हेडलाइंस। हुन तो कुछ चिरां दे इंतजार तो बाद तुसी सुनोगे प्रोग्राम फिल्मी दुनिया।

नमस्कार आदाब। अपमान 102.1 मेगाहर्ट्ज़ ते आकाशवाणी जलंधर दा रेनबो चैनल ट्यून इन कीता होया तुसी ते बने होए अपने दोस्त आरजे निहारल हंदे नाल। एक बार फिर प्रोग्राम दे विच खुशामदीद।

प्रोग्राम एक प्यार का नगमा है विच गलबात करते हाँ सदाबहार गीतां दी। इस विच गल्लां घट पर सदाबहार गीतां दा जिहड़ा है आनंद ज़्यादा लैंदे हाँ, क्योंकि एक गीत जिंदगी का फलसफा

प्यार और तकरार तुम ही से, फिर है मनुहार तुम ही से, पतझड़ मन का दूर करे जो, गुलशन और बहार तुम ही से।

प्रोग्राम एक प्यार का नगमा है, सदाबहार हिंदी गीता दा आनंद मान रहे हो तुसीं। प्यारे प्यारे मिठे मिठे नगमे जो कि हमेशा ही हर समय ही जिहड़े है गुनगुनाए जाते हैं, तो बेहद प्यारे जिंदगी दे कुछ फलसफे ने। प्यार दे समझो, मुहब्बत दे समझो, या किसी बिरह दे समझो। कहते इश्क तुमसे मेरे यार रहने दे, इश्क तुझसे मेरे यार रहने दे, दिल की तड़प बेशुमार रहने दे, आज बस चाहत की बात कर, कल के लिए तकरारें रहने दे।

प्यार करने का उसे खूब हुनर आता है, मुस्कुराकर वो मेरे दिल में उतर आता है। मचाए कैसे मोहब्बत से दिल को ए बिस्मिल, वो हर घड़ी मेरी आंखों को नजर आता है।

कुछ तो ज़रूर खास है, कुछ तो ज़रूर खास है, ये सारी बातें आम नहीं। और कौन कहता है कि रिश्ता नहीं है हमारे बीच, बस उस रिश्ते का कोई नाम नहीं है।

से इस पल को तुम भुला ना देना, हसीन से इस पल को तुम भुला ना देना, गम भरी यादों को तुम याद ना करना। जिंदगी तो बहुत दिलकश है यारा, यूं ही जिंदगी को तुम परेशानियों में गवा ना देना। प्रोग्राम एक प्यार का नगमा है, दानंद मान रही हूँ, सदाबहार हिंदी गीता दिस महफिल नू हुन इत्थे ही रोकन दा तुहाड़े तों इजाजत लैण दा वेला आ चुका है। पर जांदे जांदे एक होर गीत सुपर हिट गीता दी आवाज़ दे विच तुहाड़े वास्ते पेश करन जा रही हाँ। तो इस दे नाल ही मैनू यानी अपने दोस्त आर जे नेहा रलहन नू दिओ इजाजत, ते इंजॉय करो एक गीत।